संत कबीरदास हथकरघे पर कपड़ा बुनते रहते थे। उनके पास रोज ही कई जिज्ञासु आते थे, जिन्हें तर्कपूर्ण प्रमाण देकर वो कल्याण का मार्ग बताते थे। अपने पास आने वालों को वो दुर्व्यसनों से, नशे से सदैव दूर रहने की प्रेरणा भी देते थे। एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु काशी पहुंचे। वो कबीर के दर्शनों के लिए भी गए। उनमें से कुछ चिलम सुलगाकर तंबाकू

0: पीने लगे। कबीर ने साधु से पूछा, तंबाकू के नशीले धुएं में तुम्हें क्या फायदा मिलता है, बताना तो। उसने कहा, कुछ क्षणों के लिए मस्ती में खो जाता हूं। कबीर ने कहा, इस विषैले पदार्थ के कारण तुम अपने शरीर को जला रहे हो। यदि वास्तव में सच्ची मस्ती का अनुभव करना है तो ऊपर वाले का नाम का नशा चढ़ाकर देखो। तंबाकू का विष मन, मस्तिष्क और शरीर को विकृत कर देता है, जबकि ऊपर वाले का नाम, उसका नशा ही कुछ और है। कबीर के शब्दों ने जादू का काम किया और वो साधु फिर कभी ना नशा करने का संकल्प ले बैठा। एक बार एक व्यक्ति ने कबीर से पूछा, सांसारिक प्रपंच में फंसकर भगवान को कैसे याद करें? कबीर ने कहा, जैसे पत्नी पोहर में रहते हुए भी पति के ध्यान में लीन रहती है, उसी तरह मनुष्य सांसारिक कार्यों में जुटे हुए भी भगवान का चिंतन में लगा रह सकता है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो, हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें, बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बाल आश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर देखें, न कुछ होगा तो तजुर्बा तो होगा। आगे बढ़ने का इरादा पक्का था तो कदम कदम पर चुनौतियों से टकराना भी तय था। एक दोस्त की मम्मी ने फार्म भरने के पैसे दे दिए। युवती ने पहली ही बार में कामयाबी हासिल कर ली। साक्षात्कार का मौका आया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने का उन्होंने इरादा जताया। साक्षात्कार लेने बैठे आयोग के प्रमुख ने हतोत्साहित किया, युवती हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुश्किल होगी, विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में से कुछ चुन लो। पर वो अड़ गईं, प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। आयोग के सभी सदस्य अचंभित थे कि बुरे से बुरे हालात देखने पड़ते हैं, कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, किसी लड़की से ये सब हो सकेगा? भला हो महान संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने देश में कानून बना दिया था कि रोजगार में लड़का लड़की के बीच भेद नहीं किया जाएगा। लड़की अड़ गई, तभी वो देश की पहली आईएएस ऑफिसर बनी और पहुंच गई अपने कैडर प्रदेश तमिलनाडु। वहां मिल गए दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सी रामगोपालाचारी। आईएएस रूप में युवती को देखकर चौंक गए, ये कैसे, सब कलेक्टर कलेक्टर बनेगी फिर फील्ड ड्यूटी में जाएगी। उन्होंने समझाया कि सचिवालय में कोई काम संभाल लो, जिला जाने की नौबत भी नहीं आएगी। पर यहां भी वो युवती अड़ग रही, नहीं, मुझे आप किसी जिले में ही भेजिए, कृपया भेदभाव नहीं कीजिए। खैर, रामगोपालाचारी ने भी उन्हें अपने ही जिले होसूर में सब कलेक्टर तैनात कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला सब कलेक्टर कैसे। उन दिनों कलेक्टर को अक्सर लाठीचार्ज या गोली चलाने का फैसला लेना पड़ता था। पता नहीं एक महिला ऐसे फैसले कैसे लेगी। ऐसे में खुद को साबित करना जरूरी था और मौके की तलाश थी। मौका जल्दी ही सामने आ गया। एक सुबह बंगले के बाहर शोर मच गया, बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सब कलेक्टर साहिबा जल्दी जल्दी नहाकर निकली। 6 हाथियों के एक समूह ने गांव पर हमला बोल दिया था, भगाए नहीं भाग रहे थे वो। ग्रामीणों को जब कुछ न सूझा तो मदद के लिए सब कलेक्टर के यहां पहुंच गए, पर सामने एक महिला को देखकर बड़े निराश हुए। ये कैसे फैसला लेगी, कैसे समाधान करेगी। पल भर के लिए सब कलेक्टर भी स्तब्ध रह गई, पर कुछ ही पल में उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे मौकों पर जानवरों को मार गिराने का आदेश उन दिनों बहुत आम हुआ करता था। अचानक दिमाग में सूझा कि अगर शोर किया जाए तो हाथी भाग सकते हैं। आदेश दिया कि जिसे जो मिले जोर जोर से बजाओ। सब लोग मिलकर शोर करने लगे। ग्रामीणों ने टीन बर्तन लेकर शोर करना शुरू कर दिया, वो भी ग्रामीणों के साथ शामिल हो गईं। हाथियों के दल का मुखिया शोर सुनकर दूर चल पड़ा। लोग खुश हुए तो जोश और बढ़ गया। फिर क्या था, वे हाथियों को जंगल तक छोड़कर आए। हाथियों की जान भी बच गई और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो गया। तब तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के साथ खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कलेक्टर आई हैं, अन्ना राजम जॉर्ज। सबने माना कि महिलाएं भी कलेक्टर के रूप में कारगर हो सकती हैं। महिलाओं की राह में रोड़े बिछाने वाले तमाम पुरुषवादी अफसरों को भी एहसास हो गया कि आईएएस के रूप में महिलाओं की पदस्थापना गलत नहीं होगी। अन्ना को चेन्नई से नई दिल्ली तक प्रशासनिक सेवा में खूब मौके मिले और उन्होंने कभी निराश नहीं किया। अब हर साल दसियों युवतों के चयन आईएएस के लिए होते हैं और अन्ना राजम जॉर्ज की याद अचानक ही आ जाती है। भूलना नहीं चाहिए कि अपने देश में एक समय वो भी था जब अन्ना राजम जॉर्ज की सेवा शर्तों में ये शामिल था कि अगर वो विवाह कर लेंगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आई। अन्ना ने जल्द ही खुद को काबिल साबित कर दिया और अविवाहित रहने की शर्त हमेशा के लिए इतिहास हो गई। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: परम विरक्त संत राम सुखदास जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति मान अपमान की भावना को छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है उसे कोई अभाव हो ही नहीं सकता। एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न कर लिया, मैं रोजी रोटी जुटाने के लिए इतना व्यस्त रहता हूं कि भक्ति उपासना कर ही नहीं पाता, मेरा कल्याण कैसे होगा? स्वामी जी ने कहा, आप चार संकल्प ले लीजिए। पहला, किसी का जीना दुखाइए। दूसरा, यथासंभव असहाय और रोगियों की सेवा कर दीजिए। तीसरा, सत्य बोलिए। और चौथा, सवेरे शैया त्यागने से पहले और रात में सोने के समय भगवान को याद कर लीजिए। कपट चालाक और छल से दूर रहिए। कपट चालाकी और छल से दूर रहिए, भगवान खुद ही मिल जाएंगे। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, वास्तव में भगवान ने सबको अपना मान रखा है, लेकिन हम अपनी असीमित इच्छाओं के लालच में चलकर झूठ कपट वगैरह की शरण लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि बिना झूठ कपट के सफलता ही नहीं मिलेगी। अब ये भ्रम ही हमारा पतन का कारण है। छल कपटी और दुराचारी को भगवान कदापि सहन नहीं करते, जबकि निर्मल हृदय वाले सदाचारी भक्त भगवान की कृपा के लिए हमेशा ही प्रस्तुत रहते हैं।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: अजमेर में स्वामी दयानंद जी का निर्वाण अर्धशताब्दी समारोह चल रहा था। देश भर के आर्य सन्यासी और विद्वान समारोह में थे। महान शिक्षा सेवी महात्मा हंसराज जी भी लाहौर से समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। स्वामी सर्वदानंद जी ने कुटिया में कुछ आर्य समाजी संतों को बुलाया और उनसे कहा, स्वामी जी, हम सभी की इच्छा है कि महात्मा हंसराज जी जैसी दिव्य विभूति से संन्यास ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इससे आर्य समाज को बहुत बल मिलेगा। स्वामी सर्वदानंद जी ने उनसे कहा, जिन महात्मा हंसराज जी ने अपना पूरा जीवन आर्य समाज के प्रचार और जगह जगह विद्यालयों की स्थापना करने के लिए समर्पित कर दिया है, क्या उन्हें आप गेरुआ वस्त्र न पहनने के कारण सन्यासी नहीं मानते? कुछ देर रुककर स्वामी जी ने कहा, केवल कपड़े रंग लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। जिसका मन परोपकार और सेवा के कार्यों में लगा हो वो तो खुद ही सन्यासी हो जाता है। कपड़े रंगने के बाद भी अपना जीवन सेवा और धर्म प्रचार में नहीं लगाता, उसे साधु कैसे कहा जा सकता है? सन्यासी की वास्तविक व्याख्या सुनकर सभी गदगद हो गए।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं बैठी होती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन सच बताऊं, कभी कभी ये स्ट्रेंथ नहीं होती, ये थकान होती है। लंदन के सियोन जोन्स का एक केस सुन लीजिए और खुद ही जज करिए। उनके फादर ICU में एडमिट हुए। डॉक्टर से बात करना, मेडिकल नोट्स लेना, ट्रीटमेंट समझना, अपडेट्स लेना, सब कुछ उन्होंने अकेले हैंडल किया, हर चीज। रिजल्ट, स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उनके बाल झड़ने लगे उम्र से पहले। फिर भी उन्होंने किसी से हेल्प नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि आजकल का नया ट्रेंड है ना, हाइपर इंडिपेंडेंस, हर चीज हाइपर, हर चीज खुद करना, फिर किसी पे डिपेंडेंट मत होना, और इमोशनली भी खुद को सिर्फ मिसहैंडल करते रहना हर समय। साइकोलॉजिस्ट कैथलीन सैक्सटन कहती हैं, आज के टाइम में लोग आई डोंट नीड एनीवन को पावर समझने लग गए हैं। लेकिन रियलिटी में ये लोनलीनेस, बर्नआउट और डिस्टेंसेस क्रिएट करता है और कुछ नहीं। सोचिए, अगर आप हमेशा सब कुछ खुद करते रहोगे तो लोग इवेंचुअली मान लेंगे इसे हेल्प की जरूरत ही नहीं है, और फिर जब सच में जरूरत होगी शायद कोई आगे ही नहीं आएगा। बहुत बार ये हैबिट बचपन से शुरू होती है, जब इमोशनल सपोर्ट कंसिस्टेंट नहीं मिलता, जब ट्रस्ट्स बार बार ब्रेक होते हैं, जब बच्चा क्वाइटली यही डिसाइड कर लेता है कि फाइन, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ, और वो सर्वाइवल मोड अडल्टहुड तक चलता है। लेकिन सर्वाइवल और कनेक्शन अलग चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम इंसान हैं, कोई सोलो प्रोजेक्ट नहीं। उर्वशी लाड 43 साल तक सिंगल रही। उन्हें लगता था हेल्प मांगना मतलब वीक दिखना है। उन्होंने थेरेपी और जर्नलिंग स्टार्ट की, स्लोली खुद को ओपन करना सीखा। उन्होंने बताया, पहली बार जब उन्होंने किसी को कॉफी के लिए पे करने दिया, उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। कॉफी लेने देना भी अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वही स्मॉल स्टेप उनकी लाइफ चेंज कर गया। आज वो शादी करने वाली हैं। कभी कभी हीलिंग ग्रैंड जेस्चर नहीं, छोटी सी कॉफी से शुरू होता है। सारा हार्टिश एक बड़ी सिस्टम को सजेस्ट करती हैं। एक ऐसा फ्रेंड या पार्टनर चूज करो जो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो। वीक में एक बार उसके साथ बैठो, अपना वर्कलोड शेयर करो, उनसे एडवाइस मांगो। बस एक एडवाइस मांगना ये सिग्नल देता है कि तुम मैटर करते हो मेरे जीवन में। और डॉक्टर नादिया रहमान भी यही कहती हैं कि हम सब बायोलॉजिकली कनेक्शन के लिए बने हैं, कोलैबोरेशन ह्यूमन नेचर है, तो हेल्प लेना वीकनेस का साइन कैसे हो सकता है? शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम परफेक्शन में ट्रैप हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बस हेल्प लेने से डरते हैं। हमें लगता है अगर किसी ने हेल्प दी और वो परफेक्ट नहीं हुई तो शायद हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, या शायद कोई मना कर दे हेल्प करने से तो हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पर रिलेशनशिप परफेक्ट आउटपुट के लिए नहीं होते, वो शेयर्ड एफर्ट के लिए होते हैं।
अगली बार जब कोई चैलेंज आए तो खुद से एक लाइन बोल कर देखिए, इस बार अकेला नहीं, इस बार मिलकर। हो सकता है पहले ऑकवर्ड लगे, हो सकता है सामने वाला आइडियल रिस्पॉन्स ना दे, पर स्ट्रॉन्ग होना ये नहीं है कि आप कभी रोए नहीं। स्ट्रॉन्ग होना ये है कि जब रो रहे हो तो किसी को कॉल कर सको और बिलीव करो कि वो उठाएगा, वो रहेगा, वो साथ देगा। दोस्तों, हाइपर इंडिपेंडेंस शील्ड लग सकता है, लेकिन शील्ड पहनकर आप किसी को गले नहीं लगा सकते। कभी कभी आमर उतारना पड़ता है, हेल्प मांगनी पड़ती है। हेल्प मांगना कोई वीकनेस नहीं है, वो सच में करेज है, और शायद असली स्ट्रेंथ यही है जब आप एक्सेप्ट करते हो, मैं अकेला नहीं रहना चाहता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत सॉर्टेड चलती है। सुबह 6 बजे योगा, ग्रीन माचा, सनराइज की रील। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी सिर्फ एक ही रील चल रही होती है, मेरी बेडशीट लपेटने की रील। लोग कहते हैं ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, मैं कहती हूँ ग्रेटफुल कि वाईफाई चल रहा है यार। What?

0: खामोशी ने जान बचाई। दोस्तों,
1: कभी आपने सोचा है कि खामोशी भी किसी की जान बचा सकती है? हम अक्सर सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जोर से बोलता है, जो स्पीचेस देता है, जो आवाज उठाता है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी खामोशी। नाम था मार्सल मार्सियो। आज सारी दुनिया उन्हें सबसे मशहूर माइम आर्टिस्ट के नाम से जानती है। एक ऐसा कलाकार जो बिना एक शब्द बोले हंसा देता था, रुला देता था और सोचने पर मजबूर कर देता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उन्हें खामोश रहना सीखा कैसे और क्यों। वर्ल्ड वॉर टू का वक्त था, फ्रांस पर नाजीज का कब्जा था। मार्सल एक यंग ज्यूइश लड़का था। स्टेज और स्पॉटलाइट के सपने देखने की जगह वो सर्वाइवल का मतलब समझ रहा था। ये वो दौर था जहां गलत नाम, गलत पहचान और एक गलत आवाज मौत का सबब बन जाता था। मार्सल ने फ्रेंच रेजिस्टेंस ज्वाइन की। वो बंदूक लेकर लड़ने नहीं गया, उसका मिशन कुछ और था। उसे बच्चों को बचाना था। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, कुछ इतने छोटे कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, खतरा होता क्या है। उन्हें नाजी टेरिटरी में चुपचाप निकलना था, फॉरेस्ट से गुजरना था, चेक पॉइंट्स क्रॉस करने थे, सोल्जर्स खड़े थे जो जरा सी भी आवाज पे सब खत्म कर देते थे, और सबसे मुश्किल काम, बच्चों को चुप रखना। आपने कभी छोटे बच्चों को 5 मिनट से ज्यादा चुप करवाने की कोशिश की है? यहां बात घंटों की थी, दिनों की थी, जिंदगी की थी। ना गाना, ना कहानी जोर से, ना हंसी की आवाज, सिर्फ खामोशी, एक लंबी खामोशी। लेकिन मार्सल ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। उसने खामोशी को पनिशमेंट नहीं बनाया, उसने खामोशी को खेल बना दिया। अपने एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन से, इनविजिबल ऑब्जेक्ट से, हवा में कहानियां बनाकर, बॉडी लैंग्वेज से, आंखों की चमक से वो बच्चों को एंटरटेन करता। वो हवा में इमेजिनरी बॉल उछालता, इनविजिबल रोप खींचता, गिरते हुए वॉल का ड्रामा करता। बच्चे हंसते थे लेकिन बिना आवाज के। वो डर को वंडर बना देता था, खौफ को क्यूरियोसिटी में बदल देता था। वो फॉरेस्ट्स के बीच कांस्टेंट थ्रेट के नीचे एक साइलेंट परफॉर्मेंस चलता था, और वो परफॉर्मेंस सिर्फ आर्ट का नहीं था, वो शील्ड था, एक प्रोटेक्शन था। बच्चे चुप थे क्योंकि वो डरे हुए नहीं थे, वो कैप्टिवेटेड थे। एक एक करके मार्सल उन्हें सेफ बॉर्डर तक ले गया। हर बच्चा, जो भी बचा, एक फ्यूचर था जो जिंदा रहा, एक कहानी जो खत्म नहीं हुई। वॉर के बाद जब दुनिया ने क्लैप किया, जब स्टेज लाइट्स जली, जब मार्सल ने अपना आइकॉनिक कैरेक्टर बिप द क्लाउन क्रिएट किया, तब तक वो सिर्फ परफॉर्मर नहीं था, वो इंसान था जिसके लिए खामोशी का मतलब अप्लॉज नहीं, जिंदगी था। उसकी साइलेंस एम्प्टी नहीं थी, वो फिल्ड थी, भरी हुई थी यादों से, ट्रॉमा से, करेज से और सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी से। इसलिए शायद जब मार्सल स्टेज पर इनविजिबल वॉल बनाता था, लोग सिर्फ एक फनी एक्ट नहीं देखते थे, वो देखते थे एक इंसान जिसे पता था कभी कभी आवाज से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है। आज के दौर में हम नॉइस से घिर गए हैं। नोटिफिकेशंस, डिबेट्स, ओपिनियंस, लाउड रिएक्शंस, ट्विटर वॉर्स एंड क्या नहीं। हर किसी को बोलना है, हर किसी को सुना जाना है। लेकिन शायद मार्सल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि साइलेंस भी एक एक्शन है। कभी कभी सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जिंदा रहना होता है, सबसे बड़ी आर्ट प्रोटेक्ट करना होता है, और सबसे बड़ा करेज होता है डर के बीच में किसी और को मुस्कुराने का एक रीजन देना। मार्सल मार्सियो ने दुनिया को सिर्फ हंसाया नहीं, उसने दुनिया को बचाया, और शायद इसीलिए आज भी उसकी खामोशी बोलती है, क्योंकि वो खामोशी कभी खाली नहीं थी, वो इंसानियत से भरी हुई थी। सुनकर देखिए।

ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी का रिजल्ट रेटिंग इसी पे डिपेंड करता हो। एक बार मैंने 4 स्टार दिए तो दिया, बट रात भर मुझे गिल्ट रहा। मुझे लगा मैंने किसी का करियर रुइन कर दिया। अब तो 5 स्टार दे ही देती हूँ, चाहे समोसा थोड़ा फिलोसफिकल ही लगे।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही है यही तो है वो।

खामोशी से खेलना और खामोशी से खेलने की कला। कभी ऐसी सुबह होती है जब दुनिया थोड़ी ज्यादा तेज लगती है। हॉर्न की आवाज, नोटिफिकेशंस की वाइब्रेशंस, डेडलाइंस का प्रेशर और वो अजीब सी थकान जो पूरी नींद लेने के बाद भी फील होती है। लेकिन इसी दुनिया में किसी कोने में एक छोटा सा फूल खिला होता है। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई स्पॉटलाइट, ना कोई सेलिब्रेशन, बस धीरे से एक पंखुड़ी खुलती है और उस खामोशी में जीने का एक पूरा लेसन छुपा होता है। मैं इसे कहती हूं द फ्लावर बींग, जैसे ह्यूमन बींग होता है। फ्लावर मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है, ये याद करना है, वापस आना है, खुद से खुद को मिलवाना है। जब हम सच में किसी फूल के पास बैठे होते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए, तब कुछ बदलने लगता है। आप नोटिस करना अगर अभी तक नहीं किया, उस फूल की खूबसूरती में कोई एफर्ट नहीं है, वो इम्प्रेस नहीं कर रहा, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा,

वो बस धूप को एक्सेप्ट कर रहा है, बाहें फैलाए हवा को महसूस कर रहा है और वक्त को अलाव कर रहा है। और धीरे धीरे हमारा मन भी कोमलता में घिर जाता है। कभी आपने फूल को ध्यान से देखा है, सच में देखा है? उसकी स्टेम का हल्का सा झुकना, पेटल्स का टेक्सचर, लाइट का उनके किनारों पर हिलना, बस कुछ पल के लिए अंदर की सारी नॉइज खत्म हो जाती है, अर्जेंसीज डिसॉल्व होने लगती हैं। जो बचता है वो होता है एक प्रेजेंस, और वही मेडिटेशन है। हर फूल के अंदर एक सीक्रेट होता है, ब्यूटी और इम्परमनेंस दुश्मन नहीं होते। बट किसी कली का फूल तक जो सफर होता है वो इतना सुंदर होता है, इतना सेक्रेड होता है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। फूल को कोई पैनिक नहीं होता खिलने का, उसे डर भी नहीं होता मुरझाने का, वो सिर्फ अपने सीजन्स को ऑनर करता है। और हम क्या करते हैं? हम सब समय एंडिंग से डरते हैं, हम विंटर्स को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट स्प्रिंग का आतुरता से सिर्फ वेट करते रहते हैं। लेकिन असली ग्रोथ सरेंडर मांगती है। जैसे अनीस निन ने कहा है, एक दिन आता है जब बड बनकर रहना ब्लॉसम होने से ज्यादा पेनफुल हो जाता है। फूल कभी कली बनकर छिप नहीं सकता, ना छिपा रहता है, वो खुलने का रिस्क लेता है। अलग अलग कल्चर्स में फूल हमेशा अवेकनिंग का सिंबल रहे हैं। वेदास में सहसरा लोटस, जो सर के ऊपर डिवाइन अवेयरनेस की अनफोल्डिंग है। बुद्धिज्म लोटस में कीचड़ से उठकर प्रिस्टीन ब्लूम बन जाना। और सूफी पोएट्स के लिए हर पत्ता हर बूटा एक कहानी कहता है। रूमी कहते हैं, हर पंखुड़ी एक विजिबल प्रेयर है। और साइंस भी मानता है, फूल देखने से हार्ट बीट स्लो होती है, स्ट्रेस कम होता है और मूड अपलिफ्ट होता है। जापान के शिरिन योकू, फॉरेस्ट बेदिंग जिसको कहते हैं, ये बताता है कि नेचर वापस देता है वो सब जो नॉइस छीन लेती है। लेकिन सच कहूं, हमें रिसर्च की जरूरत नहीं थी। जो इंसान शाम के वक्त एक गेंदे के फूल को देख चुका है वो जानता है कि थेरेपी क्या होती है। जब हम फूल के साथ बैठते हैं, पहले हम उसका कलर देखते हैं, उसकी खुशबू महसूस करते हैं, धीरे से बाउंड्री ब्लर होने लगती है। आप सन को लाइट नहीं, वार्म्थ के रूप में महसूस करते हैं, हवा को सिर्फ हवा नहीं, स्पर्श के रूप में देखते हैं। फूल अपनी जगह क्वेश्चन नहीं करता, वो कंपेयर भी नहीं करता, और वो जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करता। वो अपने टाइम पर खुलता है, अपने टाइम पर बंद होता है, और अपने टाइम पर मिट्टी में लौट जाता है। उसका ट्रस्ट क्वाइट है, पर कंप्लीट है, मुकम्मल है। और शायद वही विजडम हम सभी ढूंढ रहे हैं, अपने टाइम पर भरोसा करना। हमारे अंदर भी सीजन्स होते हैं, कभी हम बड होते हैं यानी कि कली, हेजिस्टेंट डरे हुए बट पोटेंशियल से भरे हुए, कभी हम ब्लूम करते हैं एक्सप्रेसिव और खिले हुए, और कभी हम बस फेड हो जाते हैं, जैसे फूल का गिरना या मुरझा जाना, जिसको हम जानते हैं लेटिंग गो के नाम से। हर फेज जरूरी होता है। मॉडर्न लाइफ हमें सिर्फ करने पर फोकस करना सिखाती है, फिक्स करो, इम्प्रूव करो, चेस करो। लेकिन फूल एक सच कहता है, बिकमिंग फोर्स से नहीं होती, बिकमिंग स्पेस देने से होती है। आप हैमर से बड को नहीं खोल सकते, पुश करके पेटल्स नहीं ला सकते, ग्रोथ को सिर्फ अलाउ किया जा सकता है। जब मैं आज एक फूल देखती हूँ, मुझे उसकी फ्रेजिलिटी नहीं दिखती,
उसकी कोमलता सिर्फ नहीं दिखती, मुझे उसमें दिखती है एक क्वाइट स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ जो चिल्लाती नहीं, जो कंपेयर भी नहीं करती, जो बस अपनी जगह पर खिलती रहती है। हर ब्लूम एक छोटा सा मिरेकल है, और जब उसका सीजन खत्म होता है वो जमीन पर गिरता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सब कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगली बार जब आप किसी फूल के पास से गुजरें, जरा सा रुकिए, सिर्फ देखिए मत, विटनेस कीजिए, उसकी खामोशी को महसूस कीजिए, उसकी ओपननेस को देखिए, और शायद आप भी थोड़ा सा धीरे खिलने लगे। इस दुनिया में जो हसल मांगती है, फूल हमें स्टिल रहना सिखाता है, और शायद सबसे बड़ा मेडिटेशन यही है, आंखें बंद करना नहीं पर आंखें खोल के एक फूल को देखना, उसे महसूस करना, उसे अपने जीवन में उतारना। इसे ही फ्लावर बींग कहते हैं, शायद ह्यूमन बींग को कुछ सिखा दे, सोच कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन शॉपिंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोटो में मॉडल को देख के लगता है ये जैकेट में तो मैं हीरो लगूंगा। पार्सल आता है, मैं पहनता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और लगता है जैकेट नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस टाइट थी। फिर रिव्यू पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली सेम एज शोन। तब समझ आता है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: आओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, सर।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्तिधाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों,

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: अ से अर्जुन,
3: आ से आशा।
2: जी
4: टाइम हो रहा है, रिया ने बुलाए,
5: चलते हैं। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं।
4: चलो
5: चलो फटाफट, इससे पहले टाइम वेस्ट हो जाए। मुझे लगता है खेलने के लिए बुलाया होगा। चलो,
6: कल कहीं पढ़ने के लिए तो नहीं बुला रहे?
5: कहीं काम से
7: लगता है बच्चे आ गए। बच्चों की आवाज है। अरे अरे अरे अरे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ। शाबाश,
8: नमस्ते
7: बच्चों, नमस्ते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। बैठ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। पहले तो सब बच्चे अपने अपने नाम बताएंगे, ठीक है ना?
9: नमन,
7: लवीश,
9: अर्णव,
7: अभय,
9: दक्ष,
7: कुशाग्र,
9: निशांत।
7: भाई जोर से बजाओ ताली पहले सबके लिए। शाबाश शाबाश। ये बताओ, कहानी सुनना किस किस बच्चों को अच्छा लगता है? हाथ खड़ा।
10: मुझे।
7: तो बच्चों, आज से मैं आपको रोज एक नई कहानी सुनाया करूँगा।
10: कहानी
11: अपनी बहन को।
12: महमूद भी आए।
7: हाँ हाँ, महमूद को लेके आना, अपनी बहन को लेके आना, अपने भाई को लेके आना, ठीक है ना? और जानती हो कहानी किस पर हुआ करेगी?
10: हाथी,
7: गिलहरी, बिल्ली। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई। मैं इन सब की कहानियां तो सुनाऊंगा ही, और साथ में सुनाऊंगा तुम्हें अक्षर की कहानी।
13: ये क्या बात हुई?
7: ये कौन आ रहा है?
13: नमस्ते भैया।
7: नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
13: भैया, तो आज नई कमीज पहनी है।
7: क्या क्या क्या?
13: तुमने आज नई कमीज पहनी है।
7: अरे निशांत, इसका नाम आतुल नहीं, अतुल है।
13: अतुल?
7: अरे वाह अतुल, तुम्हारी कमीज तो बहुत ही सुंदर है।
13: ये मामा जी ने दी
7: अच्छा,
13: है।
7: अच्छा, क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे निशांत ने अतुल को आतुल बोला, ऐसे ही अगर हम अमर में अ की जगह आ लगाएं तो क्या बनेगा?
13: अमर।
7: आमर।
14: और भैया अकल का हो जाएगा आकल।
7: आकल। वैसे बच्चों, होता है अकल, जैसे अकलमंद। तुम तो सच में बहुत अकलमंद।
14: भैया अजब का बन जाएगा आजब।
7: हाँ आजब, शाबाश। बजाओ सी बात को जोरदार तालियां, बजाओ तालियां, शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर मैं आरती में आ की जगह अ लगाऊं तो क्या बनेगा? सोचो सोचो।
13: आरती,
14: आरती,
7: आरती। वाह शाबाश। और अगर मैं अकेला में अ की जगह आ लगाऊं तो क्या बनेगा?
13: अकेला,
7: अकेला।

0: अकेला
1: अकेला तो इसी बात में बच्चों हो जाए अक्षर की कहानी
0: भैया।
1: तो अ से अक्षर, अ से
0: अक्षर,
1: अक्षर
2: भैया मेरी बहन ने छोटे अ से अनार सिखाया है।
1: अच्छा, और बड़े अ से?
2: बड़े अ से आम।
1: वो आपको समझाने के लिए कहती है छोटा आ बड़ा आ, और वो बच्चों इसलिए क्योंकि हम अगर थोड़ी देर के लिए बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे आ, और अगर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो हम इसको खींचेंगे जैसे आ, तो अ और आ, अ से अनार और आ से आम। इसीलिए तुम्हारी मैडम या तुम्हारे सर तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं छोटे अ से अनार बड़े आ से आम। होता है लघु स्वर जैसे अ थोड़ी देर के लिए बोला हमने, और दीर्घ स्वर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आ। बोलो मेरे पीछे एक साथ, ठीक है? अ आ आ
0: आ।
1: शाबाश। तो बच्चों हमारी आज की कहानी है अ से अर्जुन और आ से आशा। अ आ
0: आ।
1: आगे समझ में? अ से
0: अर्जुन
1: और आ से
0: आशा।
1: शाबाश। बच्चों दोनों भाई बहन थे, अर्जुन छोटा था आशा बड़ी थी। दोनों भाई बहन बड़े शरारती थे, दिन भर खेलते रहते। इतना खेलते बच्चों, इतना खेलते कि उन्हें खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। हाँ अच्छा, एक बार पता है क्या हुआ?
0: क्या हुआ भैया?
1: एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। अच्छा तमाशे वाला कौन होता है, कौन बताए?
2: वो रस्सी पे चलता है भैया।
1: हाँ सही कहा तुमने,
2: जादू भी करता है।
1: जादू भी करता है हाँ
2: भैया, और वो नए नए खेल दिखाता है।
1: नए नए खेल दिखाता है, क्या बात है। तो एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया, आ से आया, आ से आशा और आ से आया, ठीक है? तो बच्चों दोनों तमाशा देखने में इतना खो गए, इतना खो गए कि अचानक जब वर्षा आई तब भी वो बाहर ही खड़े रहे।
2: भैया आ से अचानक।
1: हाँ अ से अचानक,
3: भैया आ से आया,
1: आ से आया और आ से आई,
2: भैया आ से आता,
1: आ से आता। शाबाश, आ से आज। तो शुरू आगे क्या हुआ? तो बच्चों जब बारिश हो रही थी तो उनकी अम्मा ने उन दोनों को आवाज लगाई, अरे बच्चों, अरे आशा और अर्जुन जल्दी आओ जल्दी, अरे बारिश होने लगी है बेटा, अरे बीमार पड़ जाओगे, भीग जाओगे, जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ तो बच्चों आ से आशा, आ से आवाज, आ से आओ और से
2: अर्जुन,
1: अ से अर्जुन,
2: आ से अमरूद,
1: अ से अमरूद,
2: आ से अगली,
1: अ से अगली,
2: आ से अजगर,
1: अ से अजगर,
3: अंदर,
1: अ से अंदर,
2: अम्मा
1: और अ से अम्मा। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों अर्जुन और आशा भीग चुके थे, उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। इसी बीच अम्मा ने चूल्हे में आ से आग जलाई और पकाए गर्मा गर्म पराठे।
2: भैया आ से आटा,
1: आ से आटा। शाबाश,
3: आ से आग,
1: आ से आग।
2: भैया अ से अरहर की दाल।
1: अ से अरहर, सही कहा तुमने। और बच्चों साथ ही बनाई अरबी की सब्जी। किसकी सब्जी?
0: अरबी की सब्जी।
2: भैया अ से अरबी।
1: हाँ शाबाश,
0: अ से अम्मा।
1: हाँ अ से अम्मा,
2: अ से अगरबत्ती,
1: अ से अगरबत्ती, अ से अगर, अ से अजगर, अ से असलम और अ से अम्मा, अ से अरहर और अ से अरबी। और हाँ एक चीज और भी बनाई, बड़ी चटपटी मसालेदार।
0: ये क्या बनाई?
1: अम्मा ने बनाए चटपटे आलू।
3: भैया मुझे आलू पसंद है।
1: मुझे भी पसंद है भाई चटपटे आलू।
2: भैया मुझे अनार पसंद,
1: अनार पसंद है। अ से अनार, तो अम्मा ने उन्हें अनार भी दिया खाने को और हाँ आम भी दिया। आम किसको पसंद है?
0: मुझे, मुझे, मुझे।
1: वाह, सभी को पसंद है ना। तो आ से आम, आ से आलू, अ से अरबी और अ से अरहर,
2: अ से अपनी,
1: अ से अपनी और आ से आँखें, अपनी आँखें।
3: भैया आ से आम का अचार,
1: आ से आम और अ से अचार, तो आम का अचार। वाह क्या बात है, बजाओ ताली जोरदार। तो बच्चों आगे सुनो, अम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और अर्जुन और आशा से कहा,
4: अरे बच्चों, अरे भाई अपने आप ले लो खाना, मैं तो काम में बहुत व्यस्त हूँ, ले लो। हाँ,
3: अ से अपने,
1: अ से अपने,
2: भैया आ से आप,
1: आ से आप, शाबाश, अपने आप। वाह क्या बात है, अपने आप। तो बच्चों अर्जुन और आशा ने ढेर सारा खाना खाया, उन्हें भूख भी तो लगी थी ना
0: भैया।
2: हाँ भैया।
1: अच्छा बच्चों ये बताओ उन्हें खाना कैसा लगा होगा?
0: बहुत अच्छा लगा। अच्छा,
1: शाबाश, अ से अच्छा। तो दोनों कहने लगे, आहा मजा आ गया, आहा अम्मा ने कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था, आहा मैंने तो खूब खाया।
2: भैया आ से आहा।
1: बहुत बढ़िया, आ से आहा। हाँ तो इस तरह दोनों बहुत खुश हो गए और उन्होंने अम्मा का धन्यवाद दिया। आ, आ,
0: आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टनका भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अधिक बलवान कौन?

0: एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा,
1: मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ।
0: सूरज ने हवा से कहा,
2: मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है।
0: इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा,
1: इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है।

0: सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा,
1: ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत।
0: हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की।

0: आदमी की टोपी उड़ गई।
1: अरे अरे अरे
0: पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा।
1: अरे अरे अरे
0: पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी।

0: सूरज ने कहा,
1: हवा अब तुम मेरी ताकत देखो।

0: सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा,
1: देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट।
0: हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा,
2: मान गई तुम्हारी ताकत को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: जलियांवाला बाग

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट वापस लो,
3: रॉलेट एक्ट
2: वापस लो,
3: रॉलेट एक्ट
2: वापस लो,
3: रॉलेट एक्ट
2: वापस।

0: पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।
1: महात्मा गांधी की

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। यस, हे यू, कम अप।
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: की
1: जय।
0: भारत माता की।
2: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
3: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
4: भाइयों और बहनों, सुनिए भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
5: भारत माता की
1: जय।
5: भारत माता की
1: जय।
5: भारत माता की
1: जय।
4: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
5: हमारी मांगे पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
1: रोलेट एक्ट वापस लो।
4: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है। सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
3: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थी और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही।
1: कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके,
0: लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
2: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर अगेन।
3: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
2: और शट अप। देख, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी, मासी मेरी लत सीधी करते, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधी
2: करती है, करनी है। अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय ग्रीब उत्तर है तो लव ही लव है।

0: Masi Nacan yeteri. Masi Nacan yeteri.
1: Masi
0: Nacan yeteri.
2: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
2: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
4: जनरल थार।
5: यस सर।
4: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
5: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
5: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या वार्निंग नहीं दी थी?
5: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
4: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
5: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
2: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
6: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
7: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
8: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
9: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय बोर्ड से उठ गया है। उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।

0: अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
1: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: पहली उड़ान में
2: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
3: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
4: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
5: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
4: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
5: हाँ पूछो बेटा।
4: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
5: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
4: लेकिन माँ।
5: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
4: जी,
5: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
4: अच्छा माँ, ये लो माँ।
5: ला।
3: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
4: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
5: क्या मिल गया
4: मुझे? माँ माँ माँ,
5: क्या मिल गया? क्या मिल गया
4: मुझे? मिल गया।
3: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
5: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
4: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
3: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
4: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
5: धुआं?
4: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
5: हा?
4: इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
5: कुछ हा? भी तो नहीं।
3: कुछ भी तो नहीं है।
4: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? हाँ उड़ रही है ना?
3: वो तो है मगर
4: इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
3: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
4: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें है?
3: हाँ
4: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
3: हाँ ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
4: ठीक है, आओ मेरे साथ।
5: अरे सुनो, देखते हैं। अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो।
2: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
6: हाँ अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
7: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
8: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
7: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
8: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
7: हाँ यही ठीक रहेगा, आओ चलो।
9: पता नहीं इसके लिए क्या करेंगे।
8: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती। अच्छा
9: लगता है कुछ हो गया है।
8: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
7: भाई साहब हट जाइए। आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
8: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
7: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
8: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
7: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
8: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
7: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
8: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
7: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
8: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
7: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
8: अरे शाबाश, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
7: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
8: अरे अरे अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
2: साथियों ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था, लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
10: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खास तौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
4: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी के तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना

0: अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
2: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
1: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
3: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
1: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
4: रेडियो टांटे अभी 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना, कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं, लेकिन साथियों इससे पहले उनकी हम रिपोर्ट आपको साझा करें, इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटे अभी 90.8 FM, आपना रेडियो आपनी बातें।

0: એમ તરાપ મારે થોડો.
1: रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में. और अभी आपने इस भीली गीत को सुना और ये गीत खास तौर पर विवाह में बजाया जाता है. तो अभी आपने इसका आनंद लिया. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेगमेंट हैं. अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए. आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को.
2: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं. अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है. जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं. इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें. कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने.
3: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
4: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है. तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे. जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं. तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है. तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो. अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके. दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे. और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें. तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें.
2: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए. साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं.
4: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके. तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है, या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो. और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का. जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा. तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं. इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के लिए एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
2: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
3: पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
1: लेकिन इस कैलेंडर को जानने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से फिरी गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपना रेडियो अपनी बातें।

0: खराब मारे थोड़ा
1: पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
2: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ।

जिसपे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।

0: गेहूं हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं, वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा, उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाउ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया, और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
0: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी, और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया, और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
1: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है, और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे का एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं, तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
0: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
1: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को, तीन चार लाइनों में, जिससे हम दो दो घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है। यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
0: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है। उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अब इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
2: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है। एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है। इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।

0: आदिवासी जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यार से गीत को। नमस्कार।

0: शराब मारे थोड़ो।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनका नाम है राहुल बैनर्जी दादा। राहुल दादा झाबुआ में आदिवासियों के साथ बहुत समय तक काम कर रहे हैं। बाकी की बातचीत हम दादा से ही सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: नमस्कार
0: दादा। प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए, और जहां अभी आप रह रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरे जन्म तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, और वहां एक जगह है जो मेरे ननिहाल है। उस जमाने में ऐसा होता था कि जो पहले बच्चा, मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो पहले बच्चा जो महिला जो है अपने मायके में चली जाती थी, तो वो मेरे ननिहाल एक बर्दवान जिले में एक जगह है जहाँ इस्पात कारखाना है, उसमें मेरे नाना काम करते थे, तो वहाँ मेरे जन्म हुआ है। और अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, वो जो क्षेत्र है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बहुल इलाका है, भील आदिवासियों से अधूषित है, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार जिले, बड़वानी जिले, ये सब आते हैं। तो वहाँ काम मैं रहता तो हूँ इंदौर में, मेरा हेडक्वार्टर्स जो है इंदौर है, लेकिन काम जो है ये आसपास के जो 4-5 जिले हैं जहाँ आदिवासी समुदाय रहते हैं, वहाँ मैं काम करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो दादा बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। दोस्तों आपने सुना कि दादा वेस्ट बंगाल में पैदा हुए, लेकिन उनकी डेस्टिनी उनको मध्य प्रदेश लेकर आई, जहां वो समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं दादा की ही फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।
2: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए

0: बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। अगला सवाल दादा मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अलीराजपुर भील आदिवासियों के बीच काम करने के लिए बंगाल से यहाँ कैसे आना हुआ और कब आए आप?
1: ऐसा है कि मैं बंगाल में एक संस्थान है IIT खड़गपुर
0: जी,
1: जहाँ मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तो जब हम वहाँ अलीराजपुर, ये IIT खड़गपुर एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ आसपास में आदिवासी बस्तियां हैं, तो पढ़ते पढ़ते ही मैं वहाँ जाया करता था आदिवासी बस्तियों में वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मेरे को लगा कि ये जो है सिर्फ पढ़ाई के ही सवाल नहीं है आदिवासियों के लिए, तो जीवन मरण की सवाल है। मतलब ये मैं 1980 के दशक शुरुआती दौर जो है उसके बात कर रहा हूँ, 81-82 का। तो उस समय मेरे को लगा कि इतने साल हो गए आजादी के बाद, लेकिन आज भी आदिवासी समुदाय जो है बहुत हालत खराब है। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को आदिवासियों के बीच काम करना है। तो इसलिए 1983 में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद असल में उस जमाने में मैं एक जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक राजनीतिक संगठन है, उसके साथ मैं काम करता था। तो उसके ही साथ में मैं उनके जो गांव में है बंगाल के, जो आदिवासी क्षेत्र में जहां वो काम चल रहा था उनका, वहां चला गया था। और फिर वहां काम करते करते ऐसा हुआ कि उनके ही जान पहचान के कुछ लोग यहाँ अलीराजपुर में काम कर रहे थे। उस जमाने में अलीराजपुर झाबुआ जिले का ही हिस्सा था, अभी 2008 से ये अलग जिला बन गया है। तो उस समय ये काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ आ जाओ क्योंकि यहाँ स्थिति और खराब है। बंगाल में फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है आदिवासियों की स्थिति, यहाँ जो है अलीराजपुर झाबुआ यहाँ बहुत खराब हालत है, यहाँ आ जाओ। तो ऐसे वहां से, यहाँ से जो लोग काम कर रहे थे उनने मेरे को बुलाया, तो मैं आ गया यहाँ काम करने के लिए 1985 में।
0: जी तो दोस्तों, आपने सुना राहुल दादा की यात्रा वेस्ट बंगाल से शुरू होकर किस वजह से अलीराजपुर भील आदिवासियों के बीच आ गई। बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं राहुल दादा की ही पसंद का एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही सुंदर गीत। दादा, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां जो समस्याएं थी भील आदिवासियों की, उनको कैसे हल किया आपने, क्या समाधान निकाले?
1: यहाँ जब मैंने पहुंचा तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो थी, जंगल में इनका अधिकार ना होना। पारंपरिक रूप से आदिवासी लोग जंगल में रहते आए हैं, जंगल में खेती भी करते हैं, जंगल से चीजें भी लेते हैं, जंगल में पशु चराते हैं, सब कुछ। परंतु विडंबना यह है कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, जो अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों ने यहाँ जब कब्जा कर लिया हमारे देश पे, उन लोगों ने एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया और उसमें आदिवासियों को ही चोर साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आदिवासी गड़बड़ कर रहा है, इनको कोई अधिकार नहीं होना। और आजादी के बाद भी वही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू है, आज भी वही, जो अंग्रेजों ने जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना के गया है, वो आज भी वही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू है। तो इसलिए आदिवासी अपने ही घर द्वार में चोर साबित हो गए। तो जिसके कारण, और उस समय ऐसा था कि जो आदिवासी समुदाय थे, ये 1980s की बात कर रहा हूँ, उनको ये भी नहीं पता था कि वो एक लोकतंत्र में रह रहा है, और एक ऐसे लोकतंत्र में रह रहा है जहाँ संविधान में उनको विशेष अधिकार दिया गया है। मतलब हम जो लोग हैं, बाकी जो नागरिक है, उनसे आदिवासियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है उनके भलाई के लिए। ये सब उनको कुछ मालूम ही नहीं था। वो सोचते थे कि अभी भी जो राजा का ही शासन चल रहा है, और बहुत कम लोग, 4-5% लोग उस समय वोट देते थे। वोट क्या है वही नहीं समझते थे, और ये सोचते थे कि यही सब पुलिस, नाकेदार, वन विभाग और ये सब के कर्मचारी, पटवारी वगैरह, यही मतलब राजा के नुमाइंदे है, और इन ये जो कुछ भी करते हैं, मारते पीटते सब कुछ करते हैं, वो सेना है। ये परिस्थिति थी। तो पहली बात तो हमको ये काम करना पड़ा मेरे

0: साथी और हम जो थे, हमने कि लोगों को समझाना कि भाई तुमको अधिकार है और तुमको ऐसे सब मारपीट खाना और इस तरह से घूस देना और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर संगठित होते हो तो तुम्हारे अधिकार को मांग सकते हो। तो वो थी पहला
1: अच्छा
0: पहली समस्या जिसका हल करने में बहुत समय लगा, 3-4 साल लग गए लोगों को समझाने में कि भाई ये जो है तुम्हारे अधिकार है और तुम संगठित होके, संगठन क्या है, लोकतंत्र क्या है, कुछ मालूम ही नहीं है ऐसे लोग। तो वो करके वो चीजें जो है धीरे धीरे 3-4 साल में, मतलब 82-83 से काम शुरू हुआ है। मेरे आने से पहले ही काम चल रहा था, जैसे मैंने कहा यहाँ जो काम कर रहे थे वो लोग मेरे को बुला लिए, मैं 85 में आया। 88-89 तक ये समस्या हल हो गए, लोगों को समझ में आ गया, एक संगठन बन गया जिसका नाम है खेडूत मजदूर चेतना संगठन। खेडूत यानी किसान, मजदूर और चेतना, चेतला नाना, मेन चीज जो है कि चेतना आनी चाहिए तभी जो है अपने अधिकारों को मांग सकते हैं। तो ये संगठन बन गया, उसके बाद से जो है काफी सहूलियत हो गई इस मामले में। दूसरी चीज जो है जो जो संगठन के तरफ से बहुत शिद्दत से काम किया गया है वो ये है कि जंगल, मिट्टी और पानी को बचाना। ये वन विभाग वालों ने क्या किया कि यहाँ अपना कब्जा जमा के और वो लकड़ी काट काट के ले जाने लगे, जो भी है वो इमारती लकड़ी वहां से काट के, इन्हीं को मारपीट के, इन्हीं से काम करवा के और ले जाते थे। तो बहुत सारा निर्वनीकरण हो गया, वन विनाश हो गए। तो वो चीज जब एक बार संगठन बन गया तो लोगों ने कहा कि ये हमारे पारंपरिक जो है जंगल और इनकी जो संस्कृति है वो जंगल आधारित ही है, मतलब प्रकृति आधारित है, प्रकृति पूजक। इनके देवी देवता है, अगर देखेंगे तो वो सब जो है प्रकृति के अंग है। कोई एक कंसरी माता है जो ज्वार जो होता है उस ज्वार का प्रतीक है, फिर रानी काजल माता है जो पानी के प्रतीक है, पानी लाने का, और ये इनके जो पानी के जो संकट होते हैं तब रानी काजल माता को पूजा करते हैं। इस तरह से फिर जंगल के पेड़ पौधे, ये सब पत्थर, ये सब इनका इनका कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है। ये जंगल में कहीं एक पत्थर लगा रखा है उसी को इनको ये देवता मान, यानी प्रकृति ही देवता है। तो ये इन लोगों ने कहा कि भाई ये जो है जंगल ये खत्म हो रहा है, मतलब हमारे देवता खत्म हो रहा है, ये हमको बंद करना है। तो ऐसे करके जो है ये पूरे पुरुष और महिलाएं मिलके जंगल को रोकना चालू किया है। और आज उसमें ये परिस्थिति है कि करीब 70 गांव जो संगठन से जुड़े हुए हैं, 70 गांव में 13,000 हेक्टेयर जंगल रोका हुआ है, जो आप गूगल मैप से देख सकते हो कि ऊपर से, मतलब बाकी इलाका जहां संगठन नहीं है वहां जंगल नहीं है, वीरान है। जहां जहां संगठन के गांव है वहां जंगल है बहुत बड़ा। एक गांव ऐसा है बड़ा अंबा करके जो नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है, वहां पूरे गांव के 60% जो है जंगल से आच्छादित है, पूरे जंगल से। तो ये फिर मिट्टी और पानी का संरक्षण, ये अगर मिट्टी और पानी को नहीं रोकेंगे तो फिर वो खेती के लिए पानी नहीं है और मिट्टी नहीं होगा। तो इसमें भी ये लोगों, इनका क्या है कि एक इनकी एक प्रथा है, ठास कहलाता है उसको, कि सारे जो है परिवार एक साथ हो जाते हैं। एक मोहल्ले में अगर मान लीजिए 20 परिवार है तो सारे 20 परिवार से एक एक व्यक्ति आ जाएंगे, एक साथ काम करेंगे, कुछ भी अपना घर बनाना हो या निंदाई करना हो, खेती का काम हो, फसल काटना हो, या इस तरह का जो जंगल रोकने का काम है, या पत्थर जमा के कुछ मिट्टी रोकने का काम है, या पानी रोकने का काम है, तालाब बनाना है, ये सब। तो ये जो है धास के माध्यम से, इनकी प्रथा के माध्यम से इन लोगों ने मिट्टी रोकना और पानी रोकने का काम किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम, मतलब ये एक समस्या सिर्फ आदिवासियों की नहीं है। आज जैसे हम जानते हैं कि ये पूरी दुनिया की समस्या है, जिस तरह से जो है पर्यावरण नाश हो रहा है, और फिर अभी तो आबोहवा परिवर्तन का जो की जो समस्या आ गई है उसको अगर हमको समाधान करना है तो जंगल, मिट्टी और पानी, इन तीन चीजों का संरक्षण करना ही होगा। और इसमें ये हमारा जो संगठन है खेडूत मजदूर चेतना संगठन, ये अग्रणी है, मतलब देश में सबसे आगे है इस पूरे मामले में, कि ये लोग सिर्फ अपने ही लिए नहीं बचा रहा है, ये जो जंगल बचा रहा है उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का ये हो रहा है, सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, वो हम आप जो हम दिल्ली और इंदौर में बैठे हैं हमको भी फायदा मिल रहा है उससे। तो ये काम बहुत है कि ये दो चीजें थी जो बड़ी समस्या, एक तो राजनीतिक समस्या थी कि इनके नागरिकता की इनकी पहचान नहीं थी और जिसके कारण ये शोषित हो रहे थे। इस समस्या का हल हो गया खेडूत मजदूर चेतना संगठन बनाने से। और दूसरा जो प्रकृति है जिसका बहुत नाश हो रहा था उसका इन लोगों ने समाधान कर लिया सब एक साथ मिलके। और तीसरे जो एक समस्या अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है जो है हम खाद्य संकट, कि जो जिस तरह की खेती आजकल हो रही है रसायन और ये सब कीटनाशक वगैरह दे के, उसमें जो है खेती जो है कम होते जा रहा है। जिस तरह से जितना पहले एक पूरा बायोडाइवर्स खेती होती थी, जैव विविधता वाली खेती होती थी, वो खत्म हो गया है और एक दो फसलों की खेती आ गई है, उसमें बहुत सारे केमिकल और ये सब डल रहा है जिसके कारण हम जो खा रहा है आज, कोई भी कहीं भी जो खा रहा है उसमें बहुत सारा जहर युक्त है, कीटनाशक युक्त है, केमिकल युक्त है, इस तरह से रसायन युक्त है। तो उस चीज को भी बदलना है करके अभी 5-6 साल से यही संगठन के माध्यम से एक शुरू है जिसमें महिलाएं बहुत अग्रणी है, कि हमारी जो पुरानी बीज थी, जो आजकल बात चल रही है श्रीअन्न की बात चल रही है मिलेट्स की, मिलेट्स जो है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि वो एक तो कम पानी में पक जाता है तो पानी ज्यादा नहीं लगता है उसमें, और दूसरा उसका जो ये है अनाज है वो स्वादिष्ट तो है ही ऊपर से पौष्टिक भी है। अभी जो बात आ रही है कि ये हाइब्रिड खेती कर करके हमने जो है जो अनाज हम आजकल पैदा कर रहे हैं, चाहे वो दाल हो या चावल हो या गेहूं हो, वो सब में उसके जो पौष्टिकता है वो कम हो गए, उत्पादन तो बढ़ गए हाँ, लेकिन उसके जो पौष्टिकता है कम हो गए, इसलिए हम जो खाना खा रहा है वो बहुत खराब खा रहा है। और हमारे जो दुनिया के जो ये है इस पे मतलब पौष्टिकता के जो एक सूची है उसमें हम बिल्कुल नीचे के तरफ है, 140-150 देशों में 140 नंबर है ऐसा कुछ है। तो ये एक जो समस्या है खेती को लेके और खाद्य संकट को लेके, उसमें भी हमारे संगठन जो है बहुत सारा काम कर रहा है।
1: बहुत बहुत बढ़िया दादा, आपने बहुत डिटेल में बताया हमें।

0: तो अगला सवाल दादा मेरा ये है कि नर्मदा आंदोलन के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
1: ऐसा है कि जो अलीराजपुर जो जिला है वो नर्मदा किनारा है उसका, मतलब नर्मदा नदी के पास में से वो अलीराजपुर जिला है, उसके दक्षिण सीमा पे नर्मदा नदी है। तो इसीलिए जो नर्मदा नदी के किनारे वाले गांव, जो एक गांव का मैंने जिक्र किया था बड़ा आंबा जिसमें बहुत सारे जंगल है, ये सब जो है डूब में आ गए जब वो गुजरात में नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बना नवागांव में। उसके कारण ये सारे गांव जो है, कम से कम 40 गांव अलीराजपुर के आकड़िया से शुरू होके यहाँ कखराना तक, ये सारे जो है इसमें आ गए, डूब में आ गए। तो इसके कारण जो है, जो नर्मदा आंदोलन में हम लोग भी जुड़ गए इसी के वजह से कि हमारे जो क्षेत्र है, खेडूत मजदूर के क्षेत्र के जो गांव है वो उसमें डूब में उसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी कारण हम उसमें जुड़ गए। और पहले तो हम बहुत सालों तक कोशिश की कि वो बांध रुक जाए, लेकिन वो बांध रुक नहीं पाया, बन ही गया। लेकिन ये जो हमने लड़ाई लड़ी उससे फायदा ये हुआ कि लोगों को जो वहाँ गुजरात में जो जमीन मिली अच्छी और उनकी बसाहट वगैरह ये सब बन गए, पुनर्वास हो गए, तो वो एकदम से जो दूसरे बांधों में होता है कि लोगों को उजाड़ दिया जाता है और वो फिर भटकते रहते हैं, इधर उधर कुछ मिलते नहीं है, वो स्थिति यहाँ बनी नहीं। और कुछ लोग तो आंदोलन के ऐसा थे अलीराजपुर के, जिन लोगों ने अंतिम तक उन लोगों ने जमीन नहीं ली और गुजरात जाने से इनकार कर दिया, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एक एक जो ऐसे हितग्राही थे उनको 60-60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए का मुआवजा मिला।

को चाहिए। आज के जमाने में हमें बड़े बड़े मॉल्स चाहिए, बढ़िया बढ़िया सड़कें चाहिए, जंगल पानी किसको चाहिए, मंगा लेंगे बाहर से। बहुत ही अच्छी बात है दादा कि कुछ लोग तो झंडा उठाकर चल रहे हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं राहुल दादा के ही फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया दादा। आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए क्या काम करते हैं आप?
1: ये जब हमने काम शुरू किया, जैसे मैंने कहा कि लोगों की चेतना बिल्कुल नहीं थी, वो कुछ जानते ही नहीं थे अपने संविधान के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में, तो हमको लगा कि ये जो है, हम सब बाहर से आए हैं तो हमारे भरोसे संगठन नहीं चल सकता है। इनकी अगर जिंदगी सुधारना है, मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर इनको सुधारना है और इसमें स्थायित्व आना है उस सुधार में, तो इनको पढ़ना चाहिए, इनको अच्छे से पढ़ाई इनकी होनी चाहिए। अभी सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था, उस समय तो और भी लचर थी, ज्यादा कुछ थी नहीं। स्कूलों में शिक्षक अपॉइंटेड थे लेकिन वो आते नहीं थे तो स्कूल लगती नहीं थी, और अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन उस समय तो बहुत दयनीय थी। तो हमने सोचा कि ये ऐसा नहीं चलेगा, हमको ही जो है शिक्षा प्रदान के लिए हमको आगे आना होगा। तो खेडूत मजदूर चेतना संगठन के तरफ से एक आवश्यक, और उसमें ऐसा था कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स तो कुछ जानते ही नहीं है, वो तो पढ़े लिखे है ही नहीं, और जैसा है बच्चा सिर्फ स्कूल में ही अगर पढ़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर पाएगा, इससे स्पेशली जो पहली पीढ़ी जो पढ़ रही है, तो इसीलिए उनको आवासीय शाला होना चाहिए जहां मतलब उनको लगातार देख रेख हो सके। और दूसरी बात यह है कि अलीराजपुर क्षेत्र के जो आदिवासी है वो अधिकतर जो है गुजरात चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि उनकी छोटी छोटी जो है खेत है उसमें से उनकी पूर्ति नहीं होती है, तो वो जब चले जाते हैं तो बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, तो वो जो कुछ एक तो स्कूल है ही नहीं, जो कुछ स्कूल है भी तो उसमें बच्चे जाते ही नहीं है क्योंकि वो माँ बाप के साथ उधर जा रहा है। तो इसीलिए हमने फिर तय किया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और न केवल हमको स्कूल चलाना है लेकिन उस स्कूल में क्या पढ़ाए जाएंगे, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, कौन सी भाषा में होगी, उस सब को लेके भी हमने सोचा। तो इसीलिए हमने कहा कि ये बच्चे जो है ये सर्वविदित है, साबित है रिसर्च से कि बच्चा अपने मातृभाषा में ही उसको पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए, भले बाद में जाके वो अंग्रेजी सीख ले, हिंदी सीख ले, वो अलग बात है, लेकिन जब शुरुआत हो रहा है उसकी भाषा जो है अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। इसीलिए हमने एक ये स्कूल शुरू किया, ककराना करके एक गांव है नर्मदा के किनारे, और वहां ये रानी काजल माता जिसकी मैं पहले जिक्र किया था उनके नाम से ये स्कूल शुरू किया गया, रानी काजल जीवन शाला, और उसमें जो है पढ़ाई जो है पहले जो बच्चे अभी आज भी वही स्थिति है, जो केजी वन केजी टू में जो बच्चे आते हैं बच्चे, वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत जो है अपनी भाषा में करते हैं, अपनी भाषा में करके अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान होने के बाद फिर बाद में वो हिंदी अंग्रेजी वगैरह बाकी जो जो भी हमारा बोर्ड का पाठ्यक्रम है, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल का जो पाठ्यक्रम है उसको वो पढ़ते हैं। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये आवासीय है, वहाँ अपनी संस्कृति जो भीली संस्कृति है उसमें रहना, खाना बातचीत सब भीली भाषा में होती है, अपनी भाषा में होती है, और ऊपर से वो उस स्कूल के अंदर एक स्टूडियो है, भील वॉइस नाम है उसका, और उसमें से एक यूट्यूब चैनल प्रचारित होता है जिसमें ये जो अपनी संस्कृति है, अपनी कहानियां हैं, ये सारे चीजें उसमें प्रचारित होते हैं। तो इस तरह से अपनी, और फिर वो कैंपस के अंदर इस स्कूल जो जिस चीज का मैंने पहले जिक्र किया था कि वनीकरण होना चाहिए, मिट्टी पानी का संरक्षण होना चाहिए, ये सब चीजें उस कैंपस के अंदर ही है, खेती जो जैविक खेती है, मिलेट्स की खेती है, शियन की खेती है, ये सारे चीजें जो अन खत्म हो रहा है उसको अभी वो जो रानी काजल जीवन शाला है वो पूरे अलीराजपुर जिले में एक जो शियन की खेती को प्रसारित करने का एक केंद्र है, वहीं से बीज लेके हम पूरे जिले में बांटते हैं किसानों को ताकि ये चीज हो सके। तो ये सारे चीज बच्चे सीखते हैं। तो ये जो शिक्षा में जो हमारा काम है अनूठा है, क्योंकि पूरे भील

0: क्षेत्र में ये एक ही स्कूल है जहाँ हिली भाषा में पढ़ाई होती है, और जहाँ ये जो है अपनी संस्कृति, अपने खेती, अपने प्रकृति को देखभाल करने की जो रीति है, ये सारे चीजें उस पढ़ाई का एक अंग है।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है दादा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आदिवासी लोगों के लिए, जिनको दरअसल सारे समाज ने एक तरीके से भुला दिया, आप उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत राहुल दादा की फरमाइश पर।

0: बहुत ही प्यारा गीत है दादा। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए क्या काम किया जा रहा है?
1: ये जैसा कि मैंने कहा कि जो इनकी संस्कृति है वो प्रकृति पूजक है और प्रकृति को बचाने की संस्कृति है। और आज जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकृति को अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, मतलब मानव जीवन भी खत्म होने के कगार पे आ जाएगा थोड़े ही दिन में, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो इसीलिए, और दूसरी बात ये है कि इनकी जो संस्कृति है उसमें सामुदायिक है, एक दूसरे के मदद करने की, जो मैंने कहा ढास की जो प्रथा है वो एक दूसरे की मदद करने की है, ना कि एक दूसरे के साथ होड़ में आगे बढ़ने की है। ये बहुत सालों से ऐसा है कि ये पूरे समुदाय मिलके एक साथ, इनकी एक त्योहार है, इनका एक त्योहार होता है उसको इंदल कहा जाता है, उसका नाम है। तो प्रत्येक परिवार को 5 साल के अंदर एक इंदल करना है, और इंदल में क्या होता है कि वो परिवार अपने पास जो भी इन लोगों ने 5 साल में कमाया है उस पैसे से पूरे जो समुदाय है उसको एक दावत देते हैं। उसमें नाच गाना तो होता है, पूजा भी होता है, और फिर उस पूजा में ये प्रकृति को पूजा करते हैं। एक पूरा रात भर इनका गाना चलता है, ये गायना बोलता है इनका, जैसे हिंदू समाज में रामायण है वैसे इनके गायना है। गायना में ये, मैंने ये जो धरती है ये कहाँ से पैदा हुए, मनुष्य कहाँ से पैदा हुए, ये सारे चीजें, जैसे मनुष्य के बारे में इनके गाना में ये लिखा हुआ है कि भगवान ने मनुष्य को तो बना दिया लेकिन उसमें जीवन नहीं था, तो मनुष्य को फिर भगवान ने कहा कि तुम जाके जो ज्वार है, कंसरी माता ज्वार के जो धाई है उसमें स्तनपान करो, तब जाके तुम्हारे अंदर जीवन आएगा। तो वो जाके वहां जाके स्तनपान किए तो वो उसको जीवन आ गए। इस तरह की सब कहानियां हैं, ये सब वो इंदल के समय जब ये गाना चलता है इसमें ये सारी चीजें आती है। तो ये इनके जो एक समूह में रहने का और प्रकृति को बचाने की जो संस्कृति है वो केवल इनके लिए ही अच्छे नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए अच्छे है। इसीलिए शुरू से ही इस पूरे संस्कृति को और ये मिले और संरक्षण मिले, इसके प्रयास हम करते रहे हैं। और आज तो ऐसा है कि खेडूत मजदूर चेतना संगठन एक 4 राज्य जो भील प्रदेश है, 4 राज्यों में बटे हुए हैं भील समुदाय, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इन 4 राज्यों को मिला के ऐसे ही खेडूत मजदूर चेतना संगठन जैसे छोटे मोटे बहुत सारे संगठन है, उन लोगों ने मिला के एक आदिवासी एकता परिषद नाम का एक बहुत बड़ा संगठन बनाया है। और वो संगठन जो है ये अपने संस्कृति को बचाने की जो पूरे कार्रवाई है उसके ऊपर किताबें लिखना, उसके ऊपर वीडियो बनाना, ये सारी चीजें इसीलिए आज बहुत तगड़े रूप से सामने है। ये भील जो समुदाय है इनकी जो संस्कृति है ये आप YouTube में इनके वीडियोस है जिनमें करोड़ों लोगों का मतलब व्यूज है, कुछ ऐसे वीडियोज है जिसमें 8 मिलियन 10 मिलियन ऐसा मतलब 1 करोड़ तक का व्यूज है उसमें, ऐसे सब वीडियो है इनके पास, इनकी संस्कृति, इनके गाने और इनके कहानियां ये सबको लेके। तो ये और एक जो है ये आदिवासी एकता परिषद हर साल बारी बारी से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बारी बारी से एक सम्मेलन होता है, जनवरी 13, 14, 15, ये फिक्स है, डेट फिक्स है, हर साल होगा। पहले जैसे इस साल ये गुजरात में हुआ था, अभी अगले साल ये महाराष्ट्र में होगा, फिर मध्य प्रदेश में ऐसा। और वो जो सम्मेलन होता है उसमें लाखों आदिवासी इकट्ठे होते हैं, और वो सम्मेलन मतलब देश का आदिवासी सम्मेलन में सबसे बड़ा सम्मेलन है, उसमें दूसरे प्रदेश के आदिवासी भी आते हैं देखने के लिए। और ये जो पूरे है इसमें कोई बाहर से फंडिंग नहीं है, ये खुद लोग जो है चंदा करके इस सम्मेलन को करते हैं, मतलब ये अपने समाज के एक पूरा कार्यक्रम है। तो इस तरह से जो संस्कृति, आदिवासी संस्कृति को बचाना और फिर बाकी समाज को कहना कि देखो हमारी संस्कृति जो है यही मनुष्य को बता सकेंगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह पाना, ये एक बहुत बड़ी चीज मतलब 30-40 साल में खड़ा हुआ है, जो जो एक मिसाल है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए दोस्तों सुनते हैं दादा की ही फरमाइश पर और एक प्यारा सा गीत।

0: दादा आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो मेरे जहन में आ रहा है कि महिला स्वास्थ्य पर क्या काम कर रहे हैं आप?
1: ये जो समाज है भीड़ समाज, ये भी पुरुष सत्ता वाली समाज है। हाँ, तो ये पितृसत्तात्मक समाज है। बाकी समाज जैसे है वैसे ही, मतलब पुरुषों के वर्चस्व है, जिसके कारण महिलाओं को जो है बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, फिर बच्चे बहुत पैदा करने पड़ते हैं और खाना कम मिलता है। जो जो सारा खाना है, एक वैसे ये गरीब लोग है, खाना कम है, उसमें भी क्या होता है कि महिलाएं आखिरी में खाती है तो कुछ बचती नहीं है, बहुत कम खाना। तो आप समझ ही सकते हो, एक तरफ काम ज्यादा है, दूसरी तरफ खाना कम है, तो इसका क्या नतीजा होगा कि स्वास्थ्य पे। और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि इनको बच्चा पैदा करना होता है, उसमें बहुत सारा इनके ताकत जाती है, और फिर जो मासिक धर्म है उसमें भी खून बहता है। अगर खाना अगर नहीं मिलेगा ढंग से, तो फिर ये अपने शरीर के ऊपर जो है, महिलाओं के शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव होता है। ये जैसे अगर हम देखेंगे, एनीमिया जो है, रक्ताल्पता, उसके एक मापदंड है कि महिलाओं के लिए ये 12 ग्राम्स पर लीटर, एक लीटर में 12 ग्राम होना चाहिए हेमोग्लोबिन, तब जो है माना जाएगा कि ये स्वस्थ है। लेकिन अधिकतर हम जब सर्वे करते हैं तो निकलता है कि अधिकतर जो है 70-80% महिलाएं जो है 12 से कम है, और कुछ तो 9 से भी कम है, 7-8 ऐसा है, मतलब बहुत ही हालत खराब है। और उसमें भी 3-4 बच्चे पैदा करते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि क्या स्थिति है। इसीलिए ये जो है हमारे संगठन के तरफ से हमने ये मुहिम चलाया। एक तो मतलब इनके ऊपर इतना बोझ नहीं होना चाहिए, काम के बोझ नहीं होना चाहिए, और खाना जो मैंने कहा था कि खाना खराब होते जा रहा है, खेती खराब होते जा रहा है, तो खेती को ठीक करके, जैविक खेती करके जो है इनको ठीक से खाना मिले, इसलिए जैविक खेती को लौटाने की एक प्रयास जो है। और आखिरी बात यह है कि इनकी जो बीमारियां है उनके लिए इलाज, क्योंकि ये जो स्त्री रोग है इसके लिए सरकारी सिस्टम में कुछ नहीं है। सरकारी सिस्टम क्या समझते हैं कि महिला जो है बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, तो जब भी ये प्रेग्नेंट होता है इसको देखभाल कर लो और आके जो है हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा दो, ताकि बच्चा ठीक से सुरक्षित पैदा हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहे, उनके स्वास्थ्य देख लो। लेकिन महिला जो है इसके एक अलग इनका है, इनके पूरे तंत्र है, और सिर्फ बच्चे ही नहीं पैदा कर रहा है, इसके दूसरे भी काम कर रहा है, उसके प्रति कोई सहानुभूति न सरकार में है न किसी और में है, तो न सरकारी व्यवस्था में कुछ है ही नहीं। तो ये हम जो है कुछ ऐसे महिलाओं के लिए गायनेकोलॉजिस्ट हम हमारे संगठन के तरफ से ले जाके गांव में जाके कैंप करके और उनको जांच करके और उनको इलाज करते हैं, ये पूरे करके, और हम ताकि हालांकि उससे हमारे जो ये है संगठन है बहुत छोटा है, पूरा सब पूरे इलाके में नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक हम ये चीज, ये महिला स्वास्थ्य के ऊपर हम काम करते हैं।
0: बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों सुनते हैं दादा की फरमाइश पर और एक प्यारा सा गीत। बहुत बढ़िया राहुल दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने सुना, राहुल दादा अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो वो खड़गपुर IIT से कर रहे थे, इतने प्रतिष्ठित संस्थान से कर रहे थे, वो MP में आकर आदिवासियों की सेवा में लगे हैं, बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक बार को तो हमें भी चाहे थोड़ा सा ही सोचना तो चाहिए, कब तक पिज्जा बर्गर पर जिंदगी गुजार लेंगे हम लोग। दोस्तों पौष्टिक आहार तो हमें चाहिए ही होगा, चाहे फिर उन पौष्टिक आहारों से बना हुआ बर्गर ही क्यों ना हो। दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, आपसे बात करके, आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा।
2: स्वर्ग से धरती खिल रही जैसे मेरा मन भी तो।
0: दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता जी की खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्टा पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। इतना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: दोस्तों।
1: आपको पता है, उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनो

लेवल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्तिधाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

विश्वजीत चटर्जी, जो सिंपल विश्वजीत के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 दिसंबर 1936 में हुआ था। ये हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन भी बने। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी फिल्म के इस गीत से।

बहुत ही स्वाभाविक अभिनय और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे बिस्वजीत चटर्जी। इन्होंने बंगाली फिल्मों और हिंदी फिल्मों के दर्शकों के दिलों पर सालों साल राज किया। चलिए हो जाए इनकी फिल्म का ये गीत।

बिस्वजीत कोलकाता में पले बढ़े और इनके एक्टिंग के सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई। माया, मृग और दुई भाई जैसी सफल बंगाली फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद बिस्वजीत ने हिंदी फिल्मों का रुख किया। चलिए इनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

विश्वजीत कोलकाता से मुंबई आए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाली फिल्मों की तरह इस सफल अभिनेता को सर आंखों पर लिया। परिणाम स्वरूप बेहद कम समय में विश्वजीत की झोली हिंदी फिल्मों से भर गई। चलिए उनकी फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

1962 में बिस्वजीत चैटर्जी की पहली फिल्म 20 साल बाद प्रदर्शित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। देखते ही देखते बिस्वजीत हिंदी फिल्मों के तेजी से उभरते हुए अभिनेता बन गए। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

विश्वजीत के चाहने वालों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि दी। है ना मजेदार बात। विश्वजीत पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने उनके फिल्मी करियर में 4 चांद लगा दिए। चलिए हो जाए उनका ये खूबसूरत सा गीत।

बिस्वजीत चैटर्जी ने कई यादगार फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई, जिनमें मेरे सनम, शहनाई, अप्रैल फूल, दो कलियां और शरारत खास हैं। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत। ये

विश्वजीत को उस समय के लगभग सभी हीरोइनों के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला, खास करके आशा पारिख, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी हमेशा बहुत पसंद की गई। तो सुनिए उनकी फिल्म का ये गीत।

हिंदी फिल्मों में मिली सफलता के बाद भी बिस्वजीत ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। वो कोलकाता आते जाते रहते थे और चुनिंदा बंगाली फिल्मों में अभिनय करते रहे, जिनमें सुपरहिट फिल्म चौरंगी उल्लेखनीय है। चलिए उनकी फिल्म का ये गीत।

अभिनय के बाद विश्वजीत ने फिल्म डायरेक्शन की तरफ भी कदम बढ़ाए। 1975 में फिल्म बनी कहते हैं मुझको राजा, जिसका निर्माण और निर्देशन दोनों इन्होंने ही किया। इस फिल्म में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया।

बिस्वजीत की अनगिनत फिल्में आईं। उन्होंने 2002 तक फिल्मों में काम किया। चलिए बिस्वजीत की इस फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल।

हिमा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हिमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हिमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हिमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

चार दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहां तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। चलिए दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म बनाई। आइए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

हिमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया इसी नाम का ये गीत।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हिमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता, प्रेम नगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा वगैरह वगैरह। पेश है उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और गीत

0: दोस्तों हिमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हंसो मत, बोलो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम।
1: धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता।
0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है अशोक गोयल साहब। अशोक गोयल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
2: नमस्कार
0: जी सर,
2: मैं डॉक्टर अशोक गोयल गुना से, मध्य प्रदेश गुना से।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: थैंक यू सर।
0: तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और अभी आप कहाँ रहते हैं, उन जगहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
2: जी, मैं मेरा बर्थ प्लेस मध्य प्रदेश का है, गुना का, और मैं अभी गुना में ही रहता हूँ। बीच में मैं सर्विस में रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में, और पेशे से मैं चिकित्सक हूँ।
0: जी बहुत खूब। तो अशोक सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपनी गजल सुनाएं।
2: जी, मैं कुछ अशार पेश करता हूं। देखें
0: इरशाद,
2: एक मतलब यूं कहा है कि उसकी सूरत गुलाब की सूरत, उसकी सूरत गुलाब की सूरत, यूं मेरे महताब की सूरत। उसकी सूरत गुलाब की सूरत, यूं मेरे महताब की सूरत, चांद भी रूबरू नहीं होता, चांद भी रूबरू नहीं होता, ऐसी मेरे जनाब की सूरत। चांद भी रूबरू नहीं होता, ऐसी मेरे जनाब की सूरत। एक लम्हे पे क्यों गुमा इतना, एक लम्हे पे क्यों गुमा इतना, जिंदगी है हुबाब की सूरत। एक लम्हे पे क्यों गुमा इतना, जिंदगी है हुबाब की सूरत।
0: बहुत खूब।
2: और एक शेर देखें कि क्या खबर कब सफर ये थम जाए
0: जी,
2: क्या खबर कब सफर ये थम जाए, देख तो लूं जनाब की सूरत।
0: क्या बात,
2: देख तो लूं जनाब की सूरत। शुक्रिया जनाब।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। तो अब मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा सर कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
2: जी, मेरे पसंदीदा शायरों में सबसे पहला जो नाम आता है वो है मोहतरम जनाब मीर तकी मीर मरहूम साहब
0: जी,
2: और जो उनकी बेहद जो मुझे गजल जो पसंद है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है
0: जी,
2: जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारी सी गजल अशोक सर के हुक्म पर।

0: खूब सर, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि एक छोटा सा ही सवाल कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे साहब?
1: दरअसल समीर साहब, मैं बताऊं आपको कि इन द क्लास ऑफ 9th, मैं इन द ईयर ऑफ 1966,
0: जी
1: मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं,
0: जी
1: और ये इत्तेफाक है या हुस्न इत्तेफाक कहें आप इसे,
0: क्या बात है
1: दैट्स आई एम। और मेरे वालिदे मोहतरम जो थे
0: जी
1: वो कवि थे और काफी नामचीन अपने समय में रहे। परिवार
0: जी
1: में लगभग सभी लोग साहित्य में दखलअंदाजी रखते हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो आपने
1: मेरे
0: जी
1: जी हमने
0: जी जी कहिए कहिए।
1: काका हाथरसी, नीरज जी, बाल कवि बैरागी, अटल जी, इन सब, राहत इंदौरी साहब, और इन सभी लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया है, मंच को साझा किया है उन लोगों के साथ। और मैं भी बचपन से ही लिखता रहा हूं, लेकिन 90s में आके मैंने अपना ट्रैक चेंज किया तो मैं हिंदी से उर्दू के खत्ते में आ गया। तो उसके लिए मैंने बाकायदा उर्दू लिखना पढ़ना सीखा, डिप्लोमा किया, और उसके बाद पीजी की तैयारी की थी कामराज यूनिवर्सिटी से। लेकिन
0: जी
1: चूंकि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर था तो मैं पूरे पेपर से नहीं दे सका उसके, लेकिन उर्दू लिखना पढ़ना, और एक इसे अजीब इत्तेफाक कह सकते हैं आप कि मेरा ना तो उर्दू का कोई टीचर रहा है और ना मिलने गजल का कोई मेरा उस्ताद।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तब मेरे हिसाब से तो आपने अपनी काबिलियत को, अपने पैशन को आगे बढ़ाया खुद। और
1: समीर साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ अलग एक थोड़ा सा वो रखता हूं कि इट्स नॉट ए पैशन,
0: जी
1: इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: गजल मेरे लिए पैशन नहीं है, शौक नहीं है, ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस तरह मुझे सोना, जागना, सांस लेना जरूरी है, उसी तरह मैं गजल को जीता हूं।
0: भाई वाह, क्या
1: और
0: बात
1: ये
0: है,
1: अजीब इत्तेफाक मानेंगे आप कि मैं वाकई गजल को जीता ही हूं, मैं एक सेकंड भी इसके बिना नहीं रहता।
0: बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात। बहुत बहुत बढ़िया कि एक ऐसी कला है जिसको आप हर सेकंड हर पल अपने साथ जीते हैं, जिसका हर पल आप सांसों में महसूस करते हैं उसे। क्या बात है, बहुत खूब। तो सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए एक और गजल हमें सुनाएं।
1: आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा तरन्नुम से पढूं। दुनिया
0: जी, बहुत खूब, इरशाद।
1: इश्क

0: भाई वाह।
1: आज तो बस अमीर जिंदा है। और एक शेर ये देखें कि
0: इरशाद
1: एक एहसास का शेर है।

0: प्यार की तिल में पीर जिंदा है,
1: बहुत खूब,
0: प्यार की दिल में पीर जिंदा है। और ये शेर समीर साहब
1: इरशाद, इरशाद सर, इरशाद
0: उस इंसान के लिए जो खुददारी से जीता है।
1: जी,
0: हर कहीं सर झुकाऊं कैसे,

0: जब तलक के वजीर जिंदा है,
1: बहुत खूब,
0: जब तलक के वजीर जिंदा है, जब तलक के वजीर जिंदा है।
1: बहुत खूब, बहुत ही खूब,
0: शुक्रिया शुक्रिया जनाब।
1: बहुत ही प्यारी गजल साहब, बहुत ही प्यारी गजल, और तरन्नुम में तो इसमें चार चांद लग गए, मजा आ गया साहब।
0: शुक्रिया जनाब,
1: बहुत खूब। बस एक छोटी सी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि
0: जी,
1: ऐसी कोई गजल है जो आपकी शख्सियत को बयान करती हो, सूट करती हो आपकी पर्सनालिटी को?
0: जी जरूर जरूर। देखिए, वो तो हर किसी शायर का अपना एक कहना चाहिए कि जज्बा भी होता है और वो अपना अपने आप को बयां भी करता है।
1: जी जी
0: और जब तक शायर खुद अगर अपनी कलाम में ना नजर आए
1: जी,
0: तो फिर शायरी मैं समझता हूं कि उतनी असरदार नहीं होती है।
1: क्या बात है,
0: मैं कुछ एक गजल मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो खास तौर से ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा जो जो मेरी फितरत है
1: जी,
0: आदत नहीं, मेरी फितरत जो है
1: जी,
0: वो आप इन आसार में जरूर देखेंगे।
1: जी इरशाद।

0: से न टूटे थकान में। और ये शेर बतौर खास देखें,
1: इरशाद
0: यहाँ एक लफ्ज है मौजज़ा
1: जी
0: यानी कि चमत्कार।
1: जी
0: ये मौजज़ा इश्क भी

0: और ये शेर बतौर खास
1: जी
0: तमाम
1: इरशाद
0: नाजरीन और आप सभी हजरात के लिए। अपनी
1: जी
0: बुलंदियों से

0: बहुत खूब,
1: जी
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी
1: शुक्रिया,
0: गजल,
1: बहुत शुक्रिया।
0: एकदम तरन्नुम में डूबी हुई, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अशोक सर, अब मैं गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुना सकें।
1: जी मेरे पसंदीदा जो गजल गायक हैं जनाब पंकज उदास साहब,
0: जी जी
1: और दूसरे जो हैं वो हैं जो गुलाम अली साहब।
0: जी
1: तो आप जो भी उनकी कोई गजल आपके पास हो आप वो सुनवाएं।
0: जी बिल्कुल साहब, पंकज उदास साहब की एक गजल जो आपका आपकी इजाजत हो तो जो मुझे बहुत पसंद है,
1: जरूर जरूर।
0: गम की घटा जो छाए तो झूम के बरसे। आपकी इजाजत से हाजरीनों के लिए ये गजल पेश करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अशोक सर, बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: मैं देखिए, मेरे परिचय में ऐसा कुछ खास भी नहीं है और मेरी शख्सियत में भी ऐसा कुछ खास नहीं है कि जिसके लिए हम किसी तरह के इश्तियारे और तस्वीरात का इस्तेमाल करें। मैं साधारण सा इंसान हूं और बिल्कुल बस ये है कि मैं जो मेरी जो फितरत है वो एक मुझे खुदा दाद एक चीज है मेरे पास, वो है मोहब्बत। मैं मेरे तमाम लोगों से बे इंतहा मोहब्बतें करता हूँ। मुझे ये एक बहन है ऊपर वाले की
0: जी जी जी जी
1: और तो बस एक बहुत साधारण सा आदमी हूँ आपकी और मेरी सबकी तरह से।
0: क्या
1: तो मेरा ऐसा कोई खास कुछ नहीं है कि मुझ में कुछ ऐसी, मुझे भी नहीं लगता कि मुझ में कोई बहुत खासियत है। तमाम खामियां जो आम इंसान में होती हैं वो सब उन्हीं के साथ जी रहे।
0: क्या कहा है साहब, क्या कहा है, बहुत खूब बहुत खूब। तो आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अशोक सर, मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए एक गजल और सुनाएं।
1: जी जरूर। मतलब पेश करता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि मेरी फितरत, ज्यादातर लोग यूं समझते हैं कि मैं इश्किया गजलें पढ़ता हूं
0: जी,
1: और ये हकीकत भी है, लेकिन ये इश्क हकीकी भी है और ये इश्क मजाजी भी है।
0: ओहो क्या बात है।
1: तो ये दोनों ही है, तो आप जहां इसको जोड़ेंगे ये गजल वहीं जुड़ जाएगी।
0: वाह,
1: देखें मतलब देखें
0: जी।
1: बदनाम तो मुझे

0: क्या बात है।
1: फिर भी देखें इल्जाम सर नहीं है,

0: बहुत बढ़िया।
1: और ये शेर मैं अपने लिए ही पढ़ता हूँ।
0: जी इरशाद।
1: जिंदा साधु मी था मैं,

0: बहुत खूब।
1: और यह शेर बतौर खास आपकी खिदमत में रखता हूं कि
0: जी
1: जहरीला जहर सा हूं मैं, पत्थर सा सख्त हूं,

0: इतनी प्यारी गजल, बहुत ही खूबसूरत गजल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खूबसूरत सी गजल के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के किसी गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
1: देखिए, मैं चूंकि मेरे तमाम जो पसंदीदा शायर हैं और जो गायक हैं, जैसे शहरयार साहब की गजल है, शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को
0: जी।
1: शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को।
0: क्या बात है।
1: मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को। तो शहरयार साहब की जो उमराव जान की जो गजलें हैं
0: जी,
1: वो मेरी बेहद पसंदीदा गजलें हैं
0: जी।
1: तो आप चाहें तो सुनवा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। आइए दोस्तों, डॉक्टर अशोक साहब के हुक्म पर सुनते हैं उमराव जान की ही ये प्यारी सी गजल। डॉक्टर अशोक सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी गजलें सुनी, आपसे बातचीत की, आपकी पसंद की गजलें हमने सुनी। बहुत मजा आया हमारे श्रोताओं को भी और हमें भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।
1: जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: शदीद प्यास थी फिर भी छुआ न पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को। स्याह रात ने बेहाल कर दिया मुझको, के तूल दे नहीं पाया किसी कहानी को। बजाए मेरे किसी और का तकर्र हो, कबूल जो करे ख्वाबों की पासबानी को। अमां की जा मुझे ऐशह तूने दी तो है, भुला न पाऊंगा सहरा की बेकरानी को। जो चाहता है कि इकबाल हो सवा तेरा, तो सब में बांट बराबर से शादमानी को। तो सब में बांट बराबर से शादमानी को।

0: के।
1: दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, वो लेकर आ गया है का मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं, उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन, जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खास तौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं, उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए, उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है, तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
3: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार हैं, जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है।

0: स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
1: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहां पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं, लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए, जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
2: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली, बिना कट करे, बिना जूस करे, हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है, जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
0: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
1: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है, तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
0: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
3: रेडियो टांटिया व्ही 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं, लेकिन साथियों इससे पहले उनकी हम रिपोर्ट आपको साझा करें, इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्ही 90.8 एफएम, आपना रेडियो, आपनी बातें।

0: એમ તરાપ મારે થોડો
1: रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस भीली गीत को सुना और ये गीत खास तौर पर विवाह में बजाया जाता है तो अभी आपने इसका आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेगमेंट हैं, अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
2: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं, अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
3: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
4: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
2: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
4: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक

0: क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के लिए एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें, और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
1: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
2: अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
3: लेकिन इस कैलेंडर को जानने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से फिर गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपना रेडियो अपनी बातें।

0: को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
1: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ।

जिसपे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।

0: गेहूं हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा, उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी एमबी प्लाऊ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया, और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
0: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी, और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया, और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
1: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है, और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे का एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं, तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
0: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
1: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो

0: बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को, तीन चार लाइनों में, जैसे हम दो दो घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है। यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
1: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है। उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अभी से अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
2: आप तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है। एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है। इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।

0: मैया की जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, वो लेकर आ गया है आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं, उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन, जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खास तौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं, उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए, उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी, कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में, चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है, तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
4: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है, वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
5: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा सारा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे एफपीओस को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
4: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
6: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रीन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
4: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
5: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहां मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
4: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
2: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना, कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत और बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं, लेकिन साथियों इससे पहले उनकी हम रिपोर्ट आपको साझा करें, इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, आपना रेडियो आपनी बातें।

0: रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस भीली गीत को सुना, और ये गीत खासतौर पर विवाह में बजाया जाता है। तो अभी आपने इसका आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेगमेंट हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
1: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
2: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
3: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी, तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें, जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें, जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
1: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
3: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है, या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा आप जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के लिए एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
1: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
2: पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
0: लेकिन इस कैलेंडर को जानने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से फिरी गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपना रेडियो अपनी बातें।

0: माता की जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
2: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
3: वक्त होता है एक छोटे से विराम का, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ। सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बात है।

0: जिसपे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
1: रबी की प्रमुख फसल है, इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की

0: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान माध्यम किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा, उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी एमबी प्लाऊ से जोत निकाली, उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे जिसको कभी किसान जोतता नहीं है उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
1: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
0: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है, और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं। तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
1: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
0: हमने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
1: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है। उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अभी से अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
2: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपने कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: और आप मारे ही थोड़ा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। दोस्तों, आज के कलाकार में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वो मंच है जहां पर नए गायक, नए टैलेंट अपने प्रतिभाओं को दिखाते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को समझते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाता हूं डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी से। बाकी की बातचीत हम डॉक्टर पुष्पा से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कौन है वो, कहाँ है वो, क्या करती है वो। डॉक्टर पुष्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
1: नमस्ते, मैं पुष्पा हूँ, मुझे आप पुष्पा कुमारी के नाम से जानते हैं
0: जी।
1: और वर्तमान में मैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ और फिलहाल मैं अभी जोधपुर में हूँ। इसके पहले हमने 20 साल कोलकाता में बिताया है और वैसे मैं बिहार को बिलोंग करती हूँ, मेरा नेटिव प्लेस बिहार है और यहाँ 2 साल हुए हैं मुझे जोधपुर आए हुए, पर ये जगह भी मुझे बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही अच्छा जोधपुर भी सिटी है, इसको सूर्य नगरी कहते हैं हम और बिहार के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, वो तो है अपनी परंपरा और अपने गौरवशाली इतिहास के लिए।
0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर पुष्पा एक साइंटिस्ट हैं, अभी वो जोधपुर में हैं जिसको राजस्थान का रियल हेरिटेज सिटी बोला जाता है, जहां पर अगर आपको रियल राजस्थान देखना हो तो आपको जोधपुर में दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को डॉक्टर पुष्पा के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब डॉक्टर साहब। चलिए आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: बचपन में मैं एग्जैक्टली क्या बनना चाहती थी ये मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि बचपन तो मैंने बहुत बिंदास गुजारे हैं। बचपन में मैं बहुत शैतानी भी करती थी और पढ़ाई में बहुत अव्वल रहती थी मैं। और पढ़ाई मैंने बहुत मन से किया बचपन से ही। और स्कूली शिक्षा जब हमारी समाप्त हुई, मैं बता दूं आपको कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रही हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपनी पढ़ाई मैंने वहां से की। और जब हमने स्कूली शिक्षा समाप्त की, उसके बाद मेरे जहन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने MBBS के लिए कोशिश की। 3-4 साल अटेम्प्ट भी दिए उसमें, पर भगवान ने कुछ और फैसला रखा हमारे लिए। फिर मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं प्लांट जेनेटिक्स में काम करूं, रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन वो भी मेरा नहीं हुआ। और इन द मीन टाइम मुझे एक मौका मिला, एक JRF शिप की इंटरव्यू की एक एडवर्टीजमेंट छोटी सी हमने देखी आफ्टर MSc, तो हमने उसमें अप्लाई की। और उसके इंटरव्यू के लिए हम गैंगटोक गए। गैंगटोक बहुत खूबसूरत सी जगह है, और वो जगह देख के मुझे लगा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और तब से हमारी दिशा बदल गई, और उसके बाद हमने रिसर्च में अपना कैरियर शुरू किया 2002 से। और उसके बाद मैं फिर साइंटिस्ट बन गई। और डॉक्टर जो थे, जो फिजिशियन डॉक्टर होते हैं, वो तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ, डॉक्टर पुष्पा कुमारी जरूर बन गई हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। डिजिग्नेशन, खैर मेरा पर्सनली मानना है ये है कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, आपका जो काम होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो गुण हैं उनसे आपकी पहचान होती है। आप क्या काम करते हैं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, दुनिया के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर पुष्पा की ही आवाज में।

0: बहुत प्यारा। पुष्पा जी, बचपन से लेकर आज तक की जीवन में आपके फेवरेट टीचर कौन रहे थे और क्यों?
1: ये तो एक ऐसा सवाल है जिसमें मैं अपने सारे टीचर्स का नाम ले सकती हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही थी और इनफैक्ट मैं बहुत सारे टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट रही हूँ। और वैसा ही आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे टीचर भी हमारे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को कम या ज्यादा महत्व नहीं दिया, किसी भी टीचर को। जितने भी हमारे गुरुजन शिक्षक रहे, शुरू से हमने सभी को इक्वल मान दिया, सम्मान दिया। और वैसे मैं कहना चाहूंगी कि जब मैं बहुत छोटी थी, जब जैसे क्लास 1-2, ऐसे जो मुझे याद है, जब से हमने लिखना पढ़ना शुरू किया, हमारे एक टीचर जो अभी भी है, हमारे रामबालक सर हम उनको बुलाते हैं, तो वो उन्होंने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया है और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। इनफैक्ट गाना भी उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने शुरुआत की कि चलो ठीक है, इसको गाना आता है। उनको बहुत अच्छा आता था गाने, वो मुझे भी साथ साथ गवाया करते थे। और उसके बाद फिर अगर मैं अपने जीवन को देखती हूँ, आज मैं जो बनी हूँ, उसमें हमारे स्कूल में नवोदय विद्यालय के जो प्रधान जी थे, जो है अभी भी, डॉक्टर श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा जी, तो वो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते हैं, करते थे उस समय। और जो उन्होंने हमारे अंदर वैल्यूज दिए हैं, और उसके एवज जो मैं आज बनी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं भी किसी के भी सामने खड़ी हो सकती हूँ। और मतलब आप क्या कह सकते हैं उसमें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंक्चुअलिटी, एक डिसिप्लिन वे जो होता है, एक ट्रूथफुलनेस जो होता है, अपनी ड्यूटी के लिए जो आपकी सच्चाई है, वो आप कैसे वो करते हैं, कैरी करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिखाई और इंकल्केट किया हमारे अंदर, जो वैल्यूज होते हैं मानव के जीवन में जो होने चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा अपॉर्चुनिटी हर बच्चों को मिले, कि उनको ऐसे अच्छे टीचर और गुरु मिले जो उनका जीवन संवार सके, जो मुझे मिला, मैं भगवान का बहुत बड़ा उपहार समझती हूँ।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत।
1: और मैं एक और नाम लेना चाहूंगी इसमें, जो हमारे गुरु है अभी फिलहाल, मैं जिनसे संगीत की शिक्षा ले रही हूँ, ये मुझे अभी मिले हैं, मतलब 6-8 महीने पहले, वो भी एसएम के थ्रू इनसे जान पहचान हुई हमारी, और इनसे मैं अभी जुलाई से मैंने सीखना शुरू किया है। ये भी बहुत अच्छा सिखाते हैं और इनमें भी बहुत अच्छी क्वालिटीज है, और इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा, और जो मेरी सांगीतिक शिक्षा रहेगी अभी जीवन में इसके आगे, मुझे लगता है कि इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उसमें।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात कही आपने पुष्पा जी। जो मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है, आपके टीचर्स से आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहे, बहुत मोटिवेटेड रहे, सारे टीचर्स को आपने बहुत रेस्पेक्टफुली एक्नॉलेज किया। मुझे जो समझ में आया वो ये कि आपके सारे टीचर्स ने आपको बहुत विनम्र और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ तैयार किया। आप विनम्र हैं, हर चीज का श्रेय आप देना चाहती हैं, ना कि खुद लें। ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कलाकार के लिए कि वो विनम्र रहे, अहंकार का आ भी उसको छू के ना जाए, ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही प्यारा गीत पुष्पा जी का, जो हम पुष्पा जी के सारे टीचर्स को डेडिकेट कर रहे हैं, और खास करके वो टीचर जो आज की डेट में पुष्पा जी का साथ दे रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत। तो आगे बढ़ते हुए पुष्पा जी आपसे पूछना चाहूंगा आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा और समझने के लिए, ऐसे ऐसे कौन से तीन शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, जो आपको सबसे अच्छा डिफाइन करेंगे, आपकी शख्सियत को बयान करेंगे, आपकी शख्सियत पर सूट करेंगे, ऐसे तीन शब्द बताइए।
1: अच्छा, इसमें आप सबसे पहला तो ले सकते हैं, मैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड रही हूँ, तो यू कैन से दैट आई एम अ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन। और जिसको मतलब क्या करना है उसके लिए किसी को कभी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ आपको ये करना चाहिए, वो मैंने खुद से किया। जब मुझे सेंस हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, देन आई एम वेरी मच डिसिप्लिन्ड अबाउट कि मुझे ये करना है। और दूसरा मैं कह सकती हूँ आपको, मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ तो कंपैशनेट हो सकती हूँ मैं दूसरों के प्रति। मुझे लगता है कि कोई सामने अगर कोई दुखी हो रहा हो किसी रीजन से, और मैं अगर उसको समझ पाती हूँ तो उसको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे अगर किसी के बात करने से या उससे बात करने से अगर उसकी कुछ तकलीफ कम हो जाए या फिर उसकी समस्या का समाधान हो सकता हो तो मैं करना चाहती हूँ। और खुश देखना चाहती हूँ मैं दूसरे लोगों को भी। और ऑप्टिमिस्टिक मैं हूँ, अगर कुछ घटना ऐसी भी हो जाए जिससे दुख पहुंचे तो मैं उसमें थोड़े, अब मानव हूं तो दुखी तो हो ही जाती हूँ थोड़े कुछ पलों के लिए, लेकिन फिर मैं उसमें बाद में ये सोचती हूँ कि इसमें अच्छा क्या हुआ या इसका अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब भगवान कुछ करता है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक जो हमें दिखता है और एक जो नहीं दिखता होता है। तो जो अच्छाई जो नहीं दिख रही होती है, अगर उसमें कोई अच्छाई छुपी हुई है तो हमें उसको देखना चाहिए। और मैं देखने की कोशिश करती हूँ, समझाती हूँ अपने आप को भी, और ऑप्टिमिस्टिक आप कह सकते हैं मुझे।
0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात
1: जी।
0: बड़े ही प्यारे तीन शब्द जिन्होंने आपको डिफाइन किया। दोस्तों अब आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर पुष्पा कैसे हैं। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत पुष्पा जी की आवाज में।

0: बहुत खूब। चलिए एक मजेदार सा ट्विस्ट लेते हैं, एक मोड़ लेते हैं। अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाने की चीज आपने क्या बनाई और वो कैसी बनी?
1: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। खाना बनाना मुझे कभी आया नहीं, और इसके कुछ मजेदार वाक्य हैं जो मैं बताना चाहूंगी।
0: जी
1: सबसे पहले एक्चुअली मैं स्कूलिंग हमारी ऐसी थी कि वहाँ हमें मेस की सुविधा रही, कभी भी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो पहलू था, बाद बाकी सारे काम हमें खुद करने होते थे, तो सब तो हमने सीख लिया, खाना बनाना नहीं आता था। और घर में भी मैं बहुत लाडली प्यारी थी सबकी, तो किचन तक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी लोग जाने नहीं देते थे, तो चलो ठीक है अभी खाना बनाना आया नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि घर में कोई था नहीं, मैं अकेली थी और पापा थे। शाम को पापा के बहुत सारे दोस्त आते रहते थे, हमारे पापा समाज सेवा में रहे शुरू से, तो लोग मिलने के लिए आते रहते थे बहुत सारे। उस दिन भी कई लोग इकट्ठे आ गए, उन्होंने, मेरा भाई चाय बनाया करता था, तो भाई था नहीं, पापा ने बोला कि चाय चाय बना दो, चाय चाय भिजवा दो। अब कोई था नहीं तो मैंने चाय बना दी और चाय बना दी और दे भी दी। उसके बाद सब लोग चले गए, पापा ने कुछ बोला नहीं। और दूसरी बार जब कुछ हुआ तो मैंने उनको पूछा कि पापा मैं बना दूं, तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला ना ना रहे दा, मतलब ना ना छोड़ दो, प्लीज आप मत बनाइए, रहने दीजिए। इसका मतलब ये था कि वो चाय ऐसी बनी होगी कि उन्होंने दूसरी बार प्रिफर किया होगा कि मैं नहीं बनाऊं।
0: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है,
1: और
0: बहुत क्यूट।
1: खाना बनाने के संदर्भ में मैं ये बताऊं आपको कि जब मैंने अपनी रिसर्च के लिए गैंगटोक सर्कल में जब ज्वाइन किया था एज अ JRF, तो जब मैं वहां गई तो वहां मुझे खाना बनाने की सबसे पहली बार जरूरत पड़ी 2002 से। तो मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था, तो हमारी दीदी ने मसाले दिए थे मुझे कि सब्जी में डालने के लिए, हल्दी और धनिया मिर्ची, ये उसने रेशियो बताया था कि 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची ऐसा डालना। और मैं अगर सब्जी बनाऊं, एक आलू और एक आदमी के लिए एक आलू और कुछ इतना डालू, तो उसमें मसाले में वही डालती थी, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया।
0: क्या बनता होगा
1: तो वो क्या बनता था उसके बाद वो खाई ना जाए और फेंकी भी ना जाए, तो मैं उसको क्या करती थी कि उसको मैश करके और फिर वो बना के कुछ पॉलिथीन में डाल के उसको कचरे में ले जाके उसको डिस्पोज, गैंगटोक में आप जहां तहां कचरा भी नहीं फेंक सकते, तो उसको बैग में भर के फिर हमें मार्केट में ले जाके डालना पड़ता था। तो खाना बनाने के साथ जो हमारी है थोड़ी सी मतलब ये समझदारी उतनी अच्छी है नहीं हमारी, अब तो थोड़ा बहुत कुछ बना लेते हैं तो बन जाता है खाने के लायक।
0: ओके ओके ओके ओके, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात। दोस्तों आपने सुना किस तरीके की घटनाएं और किस तरीके की जुझारूपन पुष्पा जी ने दिखाया
1: जी, खाना बनाने से वास्ता हमारा नहीं रहा शुरू से, तो इस फील्ड में मैं थोड़ी
0: रियली फन, बहुत बढ़िया
1: जी,
0: बहुत
1: फनी।
0: तो चलिए दोस्तों, हो जाए पुष्पा जी की ही आवाज में एक प्यारा सा गीत।

0: आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा पुष्पा जी कि गाना गाने के अलावा, संगीत के अलावा आपकी हॉबी क्या है?
1: जी मैं एक्चुअली सबसे बड़ी हॉबी तो मेरी गाना सुनना और गुनगुनाते रहना और गाते रहना ही रहा है बचपन से। इसके अलावा मैं ड्राइंग भी करती हूँ, तो बचपन से मैं थोड़ी बहुत अच्छी ड्राइंग भी कर लिया करती थी। उसमें पेंसिल आर्ट ज्यादा अच्छा था हमारा, क्योंकि फिर जब मैं पेंसिल का कुछ वर्क करती थी तो हमारे एक टीचर थे, वो उनको अगर पसंद आए तो वो कहते थे ये मुझे दे दो, तुम इसको और कुछ मत करो। तो कभी कलर कलर जो है उस पे करने का मौका नहीं मिला, तो पेंटिंग इनफैक्ट विद द कलर्स उतना अच्छा नहीं था। पर हाँ, अब ये जो ड्रॉइंग हमने उस समय की उसका मुझे अभी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है कि मैं बोटानिकल आर्ट्स की जो लाइन ड्राइंग होती है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, और जिसके लिए मुझे मतलब क्यू जर्नल्स या वहां से भी अप्रिसिएशन मिले कि आपकी बोटानिकल लाइन ड्राइंग्स बहुत उम्दा क्वालिटी की है और काफी अच्छी बनी। हमारी अभी जो बुक आई है उसमें भी सारे हमने खुद बनाए हैं। और इसके अलावा पुरानी फिल्में देखना मुझे पसंद है, और फिलहाल आप वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं इवनिंग वॉक पे या मॉर्निंग वॉक पे मैं जाती ही जाती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है करना।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। बस यूं ही बात को जरा सा आगे बढ़ाने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा पुरानी फिल्में देखना आपको पसंद है, कौन सी फिल्म लेटेस्ट में आपको पसंद आई है?
1: अभी हमने थोड़े दिन पहले दोबारा से मंडी देखी थी, और एक मूवी आई थी आलाप जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, और वो मैंने देखा ऐसे ही
0: क्या
1: आपके प्राइम उस पे। जी, दो मूवी हमने पुरानी देखी है, मतलब 10-15 दिन पहले तक।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और एक और बढ़िया सा प्यारा सा गीत सुनते हैं पुष्पा जी का ही।

0: जी
1: पुष्पा जी, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कुछ
0: जी
1: लोगों के व्यवहार में, किसी के मैनरिज्म में कहीं कुछ आप ऐसा पाती हैं जो आपके एक अच्छे खासे मूड को खराब कर देता हो? ऐसा क्या होता है?
0: जी सर, होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं, आप कहीं कुछ और सोच रहे होते हैं, और उस समय कोई सामने आपके साथ जो लोग हैं, या फिर आपके ऑफिस में, आपके घर में, कहीं भी, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बिल्कुल ही अपोजिट हो उस समय आपके मूड के हिसाब से, तो सारा मूड स्पॉइल हो जाता है। आपने जो भी दिमाग में सोचा होता है, कहीं खुशी मन में रहते हैं आप, वो सारा का सारा बिगड़ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। और दूसरी बात एक ये होती है कि अननेसेसरली के आर्ग्यूमेंट्स मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कई बार मैं उसमें उलझ जाती हूँ। मैं नहीं उलझना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कंपल्सन हो जाता है कि आप किसी को जवाब दीजिए किसी बात के लिए, तो और आप उसमें फिर इंडल्ज होते जाइए। तो इससे क्या होता है कि आपका एक तो मूड खराब हो जाता है, फिर आपका जो टाइम है वो पूरा चला जाता है उसमें।

0: आपकी पॉजिटिव जो दिशा में एक आपकी सकारात्मक एनर्जी जाना चाहती थी वो फिर वहां से ड्रैग आउट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको उल्टे दिशा में लेके जाती हैं। आपको कभी कभी आप इमोशनली ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं, तो या फिर अपने ही लोगों में जब अनबन सी रहे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई बात समझ नहीं रहा, आपका कोई अपना ही खास आदमी हो वो नहीं समझ पा रहा है आपकी बात को, या उस तरीके का कुछ ऐसा आ जाता है मैटर, तो फिर ये इन सारी चीजों से थोड़ी परेशानी तो होती है
1: ओके ओके ओके, हम
0: जी।
1: इंसान हैं पुष्पा जी। दोस्तों आपने सुना, किसी भी इंसान की तरह पुष्पा जी भी परेशानी महसूस करती हैं लोगों के व्यवहार से। ये सवाल जानबूझकर मैं हमारे टैलेंट से इसलिए पूछता हूं दोस्तों कि हम इनके जवाब को सुनते समय खुद को चेक कर पाए कि कहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना, और किसी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, हम अपने आप को सुधार लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक प्यार सा गीत सुनते हैं पुष्पा जी की ही आवाज में।

0: आगे बढ़ते हुए पुष्पा जी हमें बताइए ना, आपकी जिंदगी में अब तक की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही?
1: सर देखिए, मैंने लगभग अपनी आधी जिंदगी से ज्यादा ही पार कर ली है अभी तक तो, और मुझे ऐसा नहीं लगा है कि मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। लेकिन हाँ, जो मेरे अपने लोग हैं, जैसे मेरी माँ पापा, पापा तो अब खैर फिजिकली प्रेजेंस नहीं है उनका धरती पर, लेकिन फिर भी जान में तो रहते ही हैं।
0: जी
1: और जो अपने मतलब भाई बहन हैं, तो इनको सब कुछ जरूर लगता है कि दीदी ने बहुत अच्छा किया है कुछ, तो दे थिंक कि मैं जैसे मैं साइंटिस्ट बन गई या फिर मैंने किताब लिख ली, मेरी कोई बुक पब्लिश होके आ गई,
0: जी
1: तो इन सारी चीजों से उन लोगों को लगता है कि हाँ दीदी ने कुछ अच्छा काम किया है। मुझे भी लगता है कि चलो थोड़ा बहुत कुछ तो योगदान है मेरा। जैसे मैं अभी बताऊं आपको कि मैंने मेरा जो काम है बेसिकली साइंटिस्ट के तौर पर, वो मैं बैम्बूज के ऊपर काम करती हूँ। मैं प्लांट साइंटिस्ट हूँ और टैक्सोनॉमी पे काम रहता है हमारा। टैक्सोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, उसके क्या उपयोगिता है, और उसमें आप और फर्दर उसका क्या यूज हो सकता है, कहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम ऑन ग्राउंड जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारा जो हमने 2002 में अपना सफर शुरू किया था रिसर्च का, और लगभग 20 साल काम करने के बाद एक हमारे BSI की तरफ से जो पब्लिकेशन आई है, हमारी फ्लोरा ऑफ इंडिया सीरीज हमारा पूरा रिवाइज हुआ है, उसमें बैम्बू स्वाइडी एक सेपरेट वॉल्यूम बन के आई है, जो कि 50-100 साल तक लोग उसको रेफर करेंगे, और वो एक बेस जो जो होता है रिसर्च का वो रहेगा, तो पूरी दुनिया में उसको लोग जानेंगे। तो ये मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये हमारा एक योगदान, एक उपलब्धि आप इसको कह सकते हैं।

0: पुष्पा मैम, हम अपने प्रोग्राम के उस पदान पर आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल की जो भागदौड़ की स्टाइल हो गई है जीवन में, एक वे ऑफ लिविंग हो गई है, उसमें लोग बहुत ही ज्यादा टेंशनाइज्ड रहते हैं हमेशा, और जीवन को जीना भूल गए हैं। एक तरीके से आप कहें तो सिर्फ गुजार रहे होते हैं अपनी जिंदगी, और दुनिया में लोगों की संख्या दिन पर दिन भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन एक एकाकीपन जो है वो लोगों में बहुत गहरे बैठ रहा है, जिससे लोगों में एक अविश्वास और इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स वो सारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इन चीजों से बचने की कोशिश करें, अपने जीवन को रोज जीना। जो मैं करती हूँ मैं वही बता रही हूँ, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भी चूंकि मैं भी ऐसे ऐसे दौर से गुजरती रहती हूँ बीच बीच में, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे एक बेहतर तरीका सोच सकूँ अपनी लाइफ को और अच्छे से जीने का, क्योंकि जीवन तो एक ही मिलता है सबको, उसमें हर दिन आदमी को इस तरीके से जीना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ ठीक है, आज का दिन मैंने अच्छे से जिया और भरपूर जिया। तो अपने अपने जो लोग हैं आपके, उनसे मिलते रहिए, उनको उनके दुख सुख में शामिल होइए, उनकी खुशियों में शामिल होइए। आजकल लोग खुशियों में कम शामिल होना चाहते हैं, दुख में भले ही दुख दिखा देंगे लेकिन दूसरे की खुशी देखकर लोग सोचते हैं कि अच्छा वो इतना खुश क्यों है, तो ये सब नहीं करें। और सही अपने दिल को साफ रखें लोगों के बीच में, और विश्वास करें एक दूसरे का, अपनी सोच सकारात्मक रखें तो सब कुछ अच्छा दिखता है और अच्छा होता भी है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो अपने लोग हैं कम से कम उनसे जुड़े रहे, क्योंकि आजकल डिजिटली तो हम लोग जुड़ गए हैं लेकिन जो एक भावनात्मक जुड़ाव रहता था वो काफी हद तक, और एक विश्वास जो है वो काफी हद तक बहुत दूर हो गया है लोगों से। तो उन सब चीजों को, जो अच्छी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़कर, और जो जीवन के जब लास्ट एक वो आता है, आदमी जब सोचता है कि हमने पूरे जीवन बिता लिए और ये नहीं किया, लोगों से जुड़े नहीं रहे, तो अंत समय में एकाकीपन और ज्यादा खलता है, उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहता करने को। तो समय हमें एक बेहतर वो देने का तो जरूर उपाय करता है, आपको मौका देता है, तो आप उस तरीके से जिए। और अंत में मैं अपने आपके इस चैनल के लिए मैं ये कहना चाहूंगी लोगों को कि यहाँ जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं वो एक से एक बढ़िया कलाकार है, और सब लोग अच्छा कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन उनका बहुत अच्छा हो सकता है, और वो अपनी प्रतिभा को और अच्छा निखार सकते हैं, यहाँ पे उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें जारी रखें और भरपूर सहयोग जो है वो देने की कोशिश करें।
0: बहुत खूब डॉक्टर पुष्पा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यारी बातें कही आपने, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके गीत सुने, थैंक यू सो मच।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया लोगों से जुड़ने का, क्योंकि ये एक पहला हमारे लिए भी मौका है जहाँ हमारे मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मैं लोगों से सीधे जुड़ सकूँ, बात कर सकूँ, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुनने वालों को हमारा प्रणाम, नमस्कार।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर, हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।

0: अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
2: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: आज के कलाकार के प्रोग्राम में दोस्तों आइए फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं और जैसा हम लगातार कह रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, ये मंच आपका है, नए टैलेंट्स का है, नए गायकों का है। तो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं रविंद्र अकोलकर जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंद्र अकोलकर ही मेरा नाम है सर।
1: बहुत बढ़िया रविंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आप आए हमारे जानने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, नए सिंगर्स के लिए, नए गायकों के लिए। हमें बताइए ना कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए।
3: सर मैं अभी तो पिछले 7 सालों से नागपुर में बेस्ड हूँ। नागपुर जो मध्य भारत का इलाका है, महाराष्ट्र में आता है, एंड इट इज लाइक सेकेंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र
1: जी।
3: और बेसिकली मेरा जो वर्क प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं अभी करेंटली मैं मेडिकल डिवाइसेस के सेल्स में हूँ, जो ऑप्थेल्मिक जितने भी डिवाइसेस आते हैं
1: जी,
3: डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल्स, तो उसके सेल्स का मैं, मेरा काम है सर।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो दोस्तों आपने सुना रविंद्र जी डायग्नोस्टिक्स में हैं, नागपुर में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को रविंद्र जी के ही गाए हुए इस बेहद खूबसूरत नगमे से।

0: बहुत बढ़िया रविंद्र जी, क्या शुरुआत है, बहुत बढ़िया। तो रविंद्र जी, यूं ही बस आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर डायग्नोस्टिक्स में कोई बच्चा आपकी बात सुनकर इंटरेस्टेड होता है, तो वो आना चाहता है कि डायग्नोस्टिक में अपना करियर बनाना चाहता है, तो क्या सलाह देंगे उसको आप?
1: अगर सर इस फील्ड में वो आना चाहता है, जैसे मैं मेडिकल डायग्नोस्टिक फील्ड में हूँ,
0: जी
1: तो उसको सर पहले तो जैसे बोलते हैं प्रिपरेशन की जरूरत है कि एक उसका बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए, उसका एजुकेशनल प्रोफाइल रिलेटेड टू बायोलॉजी और साइंस अगर रहे तो ज्यादा अच्छा रह सकता है। थोड़ा बहुत अगर कम्युनिकेशन का पोर्ट मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है सर।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात कही। दोस्तों, हमारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन होंगे जो इस तरह के फील्ड में करियर बनाना चाह रहे होंगे। आप उन्हें सलाह दें कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर उसके टैलेंट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लिया जाए, स्किल को डेवलप कर लिया जाए, तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सुनते हैं रविंद्र जी की ही आवाज में अगला गीत।

0: रविंद्र जी, कभी कभी लोग आपके बारे में कुछ गलत फहमी हो जाती होगी उनको, तो ऐसा क्या है जो उनको गलत फहमियां हो जाती होंगी आपके बारे में? सबसे अधिक क्या गलत फहमी रखते हैं लोग?
1: देखिए सर, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है मुझे,
0: जी
1: और इसका मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा कि मैं इंसान हूँ वैसा आपको जवाब
0: ओ
1: दूंगा।
0: प्लीज ओ
1: क्योंकि जो
0: प्लीज
1: इंसान सर स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं
0: जी
1: तो वो होना ही शायद कभी कभी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि अरे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, और ये शायद थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखते हैं, मिक्स नहीं होते हैं और अपनी धुन में खोए रहते हैं, अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझते। तो आई थिंक ये बेसिकली एक मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो शायद ये ऐसी गलत फहमी हो सकती है, जो मेरे
0: ओके
1: बारे में भी सही है सर।
0: ओके दोस्तों, आपने सुना, रविंद्र जी ऐसे नहीं हैं, तो इसलिए गौर कीजिएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अपनी दिल की बात कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपके और रविंद्र जी के गीतों के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: रविंद्र जी, अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: सर, यादें तो बहुत सारी हैं। अगर मैं जैसे आपको बताऊं, यादें ऐसी हैं कि सर मेरा बेसिकली गाने से बहुत ज्यादा लगाव रहा है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो जब मैं अपने चाइल्डहुड में था तो स्कूल वालों ने मेरे टैलेंट को पहचाना एंड ये मेरे पेरेंट्स को बताया एंड उसी के कारण मैं आज हूँ कि जो मेरी जो भी आवाज है, जो भी मैंने अभी तक गाया है अपने जीवन में, वो मेरा सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे स्कूल को, सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ मैं पढ़ा, और फिर वहां से मेरी मदर जिन्होंने मेरे को म्यूजिक स्कूल में डाला, और फिर जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैं सीख पाया अपने इस सफर में। तो ये एक बहुत बड़ी लाइफ जिसे मैं याद ही बोलना चाहूंगा जो बचपन की है, जिसके कारण आज मेरे को एक सुकून जो मिलता है तो वो गाना ही है सर।
0: बहुत
1: आज इतने भागदौड़ के जीवन में और इतने टेंस एटमोसफियर में एक सबसे बड़ा, जैसे बोल सकते हैं कि एक योगा जैसा मैं म्यूजिक को मानता हूँ, इट इज नथिंग लेस देन योगा।
0: बहुत खूब, क्या बात कही आपने। तो रविंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमें कुछ सलाह दीजिए कि हम संगीत को और लोगों के और नजदीक कैसे ले जा सकते हैं, कुछ सलाह दीजिए।
1: सर, संगीत मेरे हिसाब से सर जितना मैंने समझा है जाना है, सारा जो खेल है या इसके पीछे का जो भी कुछ ये है सर, लॉजिक है, जितना आप सर समय देंगे प्रैक्टिस में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम रियाज बोलते हैं। तो जिन लोगों को भी गाना गाना है, सीखना है, अगर उनकी आवाज ठीक ठाक है तो अपने आवाज को एक रियाज के कारण या प्रैक्टिस के कारण उसको थोड़ा सा तराश सकते हैं।
0: जी,
1: और जितना अच्छा आप अभ्यास किसी भी चीज का करेंगे तो आप उसमें से पारंगत बनते जाएंगे। तो ये किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, जिसे हम बोलते हैं किसी भी फील्ड में, ये एप्लीकेबल है सर। आप जिस भी प्रोफेशन में हो तो सेम एप्लीकेबल टू संगीत। पर आपको थोड़ा एक पागलपन जिसे बोलते हैं धुनी होना भी बहुत जरूरी है, कि फिर अगर आप जितना किसी चीज का रियाज करेंगे, जितना उस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, उतना ही वो निखरता चला जाएगा सर।
0: बड़ी खूबसूरत बात कही साहब, बहुत ही खूबसूरत बात कही। तो चलिए दोस्तों, फिर हो जाए एक और प्यारा सा गीत रविंद्र जी की ही आवाज में।

0: रविंद्र जी, आपकी आज तक की सबसे बड़ी असफलता या फेलियर क्या रही, और उससे आपने क्या सीखा, उस अनुभव से क्या सीखा आपने?
1: तो देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मुझे असफलताएं तो बहुत सारी है, बट अगर मैं इसको केवल गायन तक या म्यूजिक तक रेस्ट्रिक्ट करूं, तो मैं अगर आपको बोलूं तो मेरा सिलेक्शन हुआ था 2005 में सारे गामा पा चैलेंज 2005 में। मैं एक लेवल तक आगे गया और वहां पे फिर मुंबई में होटल साहिल में, जिसे आप बोल सकते हैं सर, कभी कभी आप एंग्शियस हो जाते हैं या एंग्जाइटी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया सर। पर उसके पहले का मेरा सफर ऐसा था कि मैं हजारों लोगों में भोपाल से आगे बढ़ा। तो ये दो चीजें हैं सर। तो आई थिंक दैट कि उससे मुझे सीखने के लिए मिला कि थोड़ा आप जितना अपने आप को काम एंड कंपोज एंड फोकस्ड रख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके अगर आप चीजों पे रिएक्ट कर सकते हैं तो शायद उसके परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं सर।
0: बहुत खूब दोस्तों, एक प्यारा सा संदेश कि हम अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखें, ना तो बहुत खुशी और ना ही बहुत गम, अपनी प्रतिभा की तरफ ध्यान दें, अपना प्रतिभा के ऊपर फोकस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत हो जाए।

0: थैंक यू वेरी मच।
1: रविंद्र भाई, अगर आपको किसी एक बात के लिए याद किया जाए तो वो क्या होगी?
0: सर देखिए, मेरा जो मुझे जो याद किया जाए तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो स्वभाव है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, फन लविंग पर्सन, एंड जिसे आप बोल सकते हैं कि सर मैं लोगों को बोल देता हूँ, मैं अपने मन की बात बोल देता हूँ।
1: जी।
0: और बाकी जो सर मेरा सबसे बड़ा शौक है गाना, तो जो भी कुछ मैंने गाने गाए हैं पूरे इमोशंस के साथ, जिनके साथ मैं न्याय कर पाया हूँ सर, अगर लोग मेरे वो गाने सुने तो शायद वो देख पाएंगे कि हाँ, उस पर मैंने अपना मेहनत और अपना लगन उसमें लगाया है, तो अगर उनके कारण मुझे जाना जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी सर।
1: बिल्कुल ठीक कहा साहब आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा गीत। रविंद्र भाई, मुझे ये बताइए कि आज तक की डेट में आपको सबसे अच्छी एप्रिसिएशन या प्रशंसा क्या मिली है?
1: सर, प्रशंसा की बात करूं तो मेरे जीवन में एक समय था, जैसे हमारे जो सुपरस्टार रहे हैं फर्स्ट राजेश खन्ना जी, तो
0: जी
1: शायद ये कहना बहुत छोटी लाइक प्लेटफॉर्म है, छोटी सी बात होगी, बट मुझे याद आता है कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था सर, 7th से लेकर के जो 10th स्टैंडर्ड तक का मेरा टाइम था, दैट वाज द गोल्डन पीरियड। तो सर उस टाइम पे मैंने बहुत सारे मीन्स कॉम्पिटिशन जीते हैं, और इवन मैंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा हुआ है, तो मुझे उसके कारण स्कूल में जाना जाता था, और मैं जहां जाता था वहां पे मैं प्रशंसा का पात्र रहता था। तो जिसमें कि मुझे जूनियर तानसेन करके भी मेरे को स्कूल में बुलाया जाता था,
0: ओहो, क्या बात
1: और
0: है।
1: इवन इवन सर ऐसा था बिकॉज बहुत बार जब म्यूजिक के एग्जामिनेशन के टाइम पे जब एग्जामिन ये आते थे एग्जामिनेशन के लिए आते थे म्यूजिशियंस, तो उन्होंने भी 2-3 बार बोला कि जो आपकी आवाज है वो बिल्कुल ग्वालियर घराने को सूट करती हुई एकदम
0: अरे वाह,
1: सटाक आवाज है। तो ये कुछ ऐसे लम्हे रहे हैं सर कि जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
0: अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बात। ग्वालियर घराने की याद दिलाई आपने, बहुत खूबसूरत। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत बढ़िया रविंद्र भाई, मुझे अपने जीवन के तीन सबसे प्रभावशाली लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो।
1: सर देखिए, मैं मेरा जो समय था जब मैं कॉलेज लेवल से आगे बढ़ रहा था, तो वो टाइम था। अगर मैं गाने की बात करूं सर, सबसे पहले तो उसमें सोनू निगम जी बहुत जल्दी जल्दी लैडर्स चढ़ रहे थे, बहुत पॉपुलर हो रहे थे, तो सारे गामा प ही वो एक प्लेटफॉर्म था जहां से उन्होंने वो आगे बढ़े और जिसको देखते सुनते हुए हम आगे लाइक निकले लाइफ में। उसके बाद उसी प्लेटफॉर्म से श्रेया घोषाल जो आज भी वंडर्स कर रही है, और गाने की बात करूं तो आज के डेट में जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं सर, वो है अरिजीत सिंह। उनके गाने भी बहुत अप्रिशिएट करता हूं मैं, और बहुत ही उनसे इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। और सर अगर देखा जाए तो ये तो आपने हस्तियों की बात की, बाकी फिर मैं श्रेय देना चाहूंगा अपने पापा को भी, बिकॉज वो बहुत ही एक अलग किस्म के पर्सनैलिटी थे जिनसे मुझे काफी कुछ सीखने के लिए मिला कि कैसे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे अपनी बात रखनी चाहिए, और कैसे किसी भी प्रोफेशन में किसी भी ग्रुप में आपको घुल मिल के रहना चाहिए।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया बात, तीन बहुत ही प्रभावशाली लोग आपकी जिंदगी के, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए रविंद्र जी की ही आवाज से सुनते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

0: रविंद्र जी, अपने आप को फिट और सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आप क्या करते हैं? आपका सबसे पसंदीदा तरीका क्या है?
1: सर देखिए, वैसे तो मैं बहुत बाय नेचर, बाय जैसे बोलते हैं मिस मेरा जो फिजिक है उसके हिसाब से बहुत फिट पर्सन हूँ और इनर्जेटिक हूँ सर।
0: जी
1: बट फिर भी आज के भागदौड़ के जीवन में, टेंस एटमॉस्फेयर में, सबसे पहला तो सर मेरा गाना ही है जो मुझे एक बोलते हैं कि बहुत ही एक शांति का अनुभव देता है।
0: जी
1: उसके अलावा फिजिकली अगर बात देखें तो सर मुझे खेल का बहुत शौक है, जिसमें अभी पिछले कुछ विगत 3-4 साल से मैं यहाँ पे नागपुर में फुटबॉल खेलता हूँ।
0: ओहो,
1: और मैंने पहले कभी फुटबॉल खेला नहीं था, बट उसके बाद फुटबॉल में जो जो चीजें लगती है सब मैंने परचेस की और आज मैं काफी अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ। बिकॉज फुटबॉल जो ऐसा गेम है, पूरा टीम गेम है, जिसमें आपको एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक भागना ही पड़ता है सर,
0: जी
1: और आपको एक जैसे बोलते हैं टीम भावना के साथ खेलना पड़ता है।
0: जी
1: और उसके अलावा यस, क्रिकेट तो शायद पूरे देश का जुनून है, तो हमने क्रिकेट भी खेला है तो वो भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं सर। तो
0: जी
1: ये दो स्पोर्ट्स है, साथ में थोड़ा बहुत जब समय मिलता है व्यस्त पीरियड में, बिकॉज प्रोफेशन जो अलाउ करता है वो टाइम बहुत कम दे पाता है, तो उसमें कभी वॉक कर लिया और थोड़ा बहुत रनिंग भी कर लेता हूँ सर।
0: वाह, क्या बात है। आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि इसी स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहेगा और आप पूरी पर्सनालिटी आपकी चमकती रहेगी। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं रविंद्र जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी गायकी। रविंद्र जी, अगर आपको अधिकार दिया जाए, अथॉरिटी दिया जाए, तो आप सोशल मीडिया की दुनिया में क्या बदल देना चाहेंगे?
1: सर, सोशल मीडिया जैसे अगर हम केवल अभी गाने को ही सीमित रखें तो इसके बहुत फायदे भी हैं, पर इसके नुकसान ये हैं कि जो भी लोग आते हैं वो बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी रियाज के, सबको एकदम से नेम एंड फेम चाहिए रहता है या फिर उनको रिकग्निशन चाहिए रहता है। सर, तो मेरा वही रहेगा कि ये अगर हम इसको सिंगिंग तक ही सीमित रखे, स्टार मेकर या स्म्यूल जो भी आजकल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, इनको सही तरीके से अगर लेते हुए उसका पूरा अभ्यास किया जाए और गाने को जिसको भी आपको परफॉर्म करना है उसका पूरा ऑब्जर्व करके सिंगर्स ने कैसे गाया उसमें अपना 100% दिया जाए, तो आप अपने परफॉर्मेंस में चार चांद लगा सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म को एक, जैसे बोल सकते हैं कि एक नया आयाम दे सकते हैं सर, तो उसका मिसयूज नहीं होगा सर। अदरवाइज तो सर फिर इस गाने के लिए हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं।
0: बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने, बहुत बढ़िया बात कही। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गीत सुने रविंद्र जी की ही आवाज में।

0: अमेजिंग, बहुत ही प्यारी गायकी, अमेजिंग रविंद्र जी, मजा आ गया सुन के। अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: सर, संदेश तो ऐसा है कि लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और बहुत कंपटीशन है आज के समय में। लोगों के अपने पर्सनल इश्यूज भी है, पर्सनल एस्पिरेशंस भी है, तो उन सब चीजों को देखते हुए जो सिंगिंग है या म्यूजिक है बहुत बड़ा माध्यम है सर, जिसके कारण हम जिसे बोल सकते हैं कि एक अगर हम उसको एक मेडिटेशन की तरह लें या एक तपस्या की तरह लें, तो सर वो जीवन में आपको काफी शांति और सुकून दे सकता है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है सर, ये सिंगिंग से रिलेटेड आप मुझसे जो बातें कर रहे हैं,
0: जी
1: तो अगर हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखें तो सर सिंगिंग से आपको बहुत ही